हुस्ने वाले तेरा जवाब नहीं है, और हुस्ने वाले तेरा जवाब के बाद हम जाते हैं, और वो भी एक ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग आज के मूड में है, वो है और ये है, फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है, आपकी परिछाइयां। मैं निगाहें तेरी चेहरे से परमा श्री मोहम्मद रफी, एक रोमांटिक सॉन्ग है जिस फिल्म में धर्मेंद्र काम किया है। आओ सुना जाए ये क्या है भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा गीत होगा।

और दोस्तों और मैं निगाहे तेरी चेहरे से परमान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है। उसके बाद हम चलते हैं एक सुपर हिट ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग है और वो है माइती मुकेश नाइटिंगेल लता जी का एक फिल्म है। आपको ये गीत जरूर सुनना चाहिए

जय श्री राम। राम के अनन्य भक्तों, प्रभु प्रेमियों, प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके गोपाल परदेसी बाबा की तरफ से राम राम। नाना प्रकार के राम अवतारा रामायण सबको किए अपारा। भक्तों, जिस प्रकार समय समय से राम के अवतार होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कल्पों में और अलग अलग लोकों में दुनिया में भी विभिन्न प्रकार से रामचरित का वर्णन किया गया है। इसी कारण तुलसीदास ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण के करोड़ों भक्तों में से राम कथा के प्रसिद्ध रचयिता कौन है? तो भक्तों, भगवान शिव ने इसे रचकर माता पार्वती को सुनाया, फिर भगवान से सुनकर ये प्रसिद्ध कथा काकभुशुंडी जी ने अपने पक्षियों के समूह में बैठकर गरुड़ जी को सुनाया। इसी कथा को महर्षि याज्ञवल्क्य ने गंगा के तीर पर बैठकर भरद्वाज मुनि और दूसरे ऋषियों को सुनाया। सर्वप्रथम इस कथा की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने की, तत्पश्चात समय समय पर अलग अलग भाषाओं के महान कवियों ने इस कल्याणकारी कथा को अपने अपने समय की सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपने अपने ढंग से गाया। रामायण में सबसे अधिक मूल्यवान यानी विशेष बात यह है कि इस कथा में श्री राम का चरित्र एक आदर्श मानव के रूप में दर्शाया गया है। इसी कारण ये कथा मानव को सच्ची राह दिखाती है। भक्तों, इस राम कथा के द्वारा किस प्रकार समस्त प्राणियों ने अपने अपने धर्म अर्थात अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते जा रहे हैं। प्रिय प्रभु प्रेमियों, ये महान गाथा संप्रदाय और जात पात को ना देखते हुए हर प्राणी की आत्मा को छूती है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से धरती के प्राणों में शक्ति प्रदान करती है, हर युग में बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव तभी मनाया जा सकता है जब हमारे मन में प्रेम, सच्चाई और विश्वास हो। ये राम कथा रस गंगा जहां भी बही, सबने उसका स्वागत किया, फिर चाहे वो

ये राम कथा हमें प्रेम त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए श्री राम के प्यारे भक्तों, शुभारंभ करते हैं रामायण का प्रथम कांड।

वंदनीय प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्तगणों, कवियों के समाज में चंद्रमा के समान सुशोभित श्री तुलसीदास जी के अनुसार राम कथा सुंदर करतारी संशय वहग उड़ावन हारी अर्थात प्रभु श्री राम जी के लीलाओं की गाथा अत्यंत सुंदर है एवं प्राणी मात्र की प्रत्येक शंका का समाधान करती है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री राम से बड़ा और कोई नाम नहीं है और श्री राम के कथा से बढ़कर पुण्यदायन अन्य कथा नहीं है। आज आप और हम श्री रामायण के बाल कांड का रस स्वादन करेंगे।

शैलसुता पार्वती को जब तप करते हुए हजारों वर्ष बीत गए, तब आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब शिव जी पति रूप में अवश्य मिलेंगे। और भक्तों, उधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने भगवान शिव भोलेनाथ को पार्वती के साथ विवाह के लिए तैयार किया। इस प्रकार शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। अचानक पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे आदिदेव, हे प्राणनाथ, हे कृपा निधान, मुझे उस नाम का रहस्य बताइए जिसका आप सुमिरन आओ।

पार्वती, अब मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी वो कथा विस्तार से सुनाता हूँ जिसे काक बुसुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाई थी। जगत प्रसिद्ध के कई देश में धर्म और नीति का पालन करने वाले प्रताप भानु नाम के राजा राज्य करते थे। उनके भाई का नाम अरिमर्दन था एवं धर्मरुचि नाम का बुद्धिमान मंत्री भी था, परंतु विप्र समुदाय के श्रापवश उनको कुल समेत राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। ये तीनों ही क्रम से रावण, कुंभकरण एवं विभीषण के नाम से पुलत्स्य कुल में उत्पन्न हुए।

भगवान अग्नि देव ने यज्ञ से प्रसन्न होकर जो हविष्यान राजा को दिया था उसे खाकर तीनों रानियां कौशल्या, केकई एवं सुमित्रा गर्भवती हो गई। तीनों रानियां मन में बड़ी हर्षित हुई। भगवान जिस दिन से गर्भ में आए चहुं ओर हर्षोल्लास छा गया। इस प्रकार 9 माह बीत गए जब और वो समय आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। नक्षत्र योग लगन एवं वार सभी अनुकूल हो गए। पावन चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का अत्यंत प्रिय अभिजीत मुहूर्त था, दोपहर का समय था।

प्रभु श्री रामचंद्र जी के अतिशय प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न के चूड़ाकरण नामकरण उपनयन आदि संस्कार विधिवत किए गए। भगवान श्री राम जी ने अनेक प्रकार की मनमोहक बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। एक बार माता कौशल्या ने बाल रूप श्री राम को पलने में सुलाकर पूजा घर में ठाकुर जी को भोग लगाया तो उन्होंने बालक श्री राम को वहां भोजन करते देखा। माता पलने के पास गए तो शिशु को पलने में सोता देखकर विस्मित रह गए। भक्तों, इस प्रकार अनेक लीलाएं करते हुए श्री राम जी सबको विस्मित कर

महाराज दशरथ ने मुनिवर विश्वामित्र के सन्मुख हाथ जोड़कर जैसे ही कहा कि मुनिवर, राम लखन भरत शत्रुघ्न ये चार पुत्र मैंने वृद्धावस्था में बहुत प्रयत्न से पाए हैं, आप उन्हें छोड़कर चाहे जो मांग लीजिए, चाहे मेरे प्राण मांगो, मैं सहर्ष देने को तैयार हूं। तो तुरंत ही विश्वामित्र जी क्रोधित हो उठे और राजसभा से उठकर चल दिए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शांत किया और राजा को समझाया कि राजन, राम लखन को आप मुनिवर के साथ भेज दीजिए, राम लखन कोई साधारण बालक नहीं है,

प्रभु श्री राम तो पृथ्वी पर नर लीला रचाने और राक्षसों के विनाश हेतु अवतरित हुए थे। अतः उन्होंने मारीच की मायावी शक्तियों को देखकर उसे बिना फर का बाण मारकर लंका भेज दिया ताकि सीता हरण के समय वहां स्वर्ण मृग बनकर काम आ सके। इसके पश्चात महामुनि विश्वामित्र के पास मिथिला के महाराज राजा जनक के यहां से सीता स्वयंवर का समाचार आया। मुनि विश्वामित्र ने श्री राम और लखन को साथ लेकर मिथिला के लिए चल दिए। मार्ग में अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी जो श्रापवश पत्थर बनी थी भगवान की चरण कमल पड़ते ही नारी रूप होकर अपने पति गौतम ऋषि के लोक में

श्री गंगा जी की पूजा अर्चना एवं स्नान करके मुनि विश्वामित्र आनंद कंठ भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण जी को साथ लिए जनकपुरी में पहुंचते हैं तथा वाटिका में ठहर जाते हैं। राजा जनक वाटिका में ही उनसे भेंट करने पहुंचते हैं। मंगल मूल श्री राम को देखकर जनक जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं तो मुनिवर श्री राम और लक्ष्मण का परिचय कराते हैं। लक्ष्मण के मन की बात जानकर प्रभु श्री राम गुरु जी से नगर भ्रमण की आज्ञा लेकर नगर के बाजारों में घूमकर आते हैं।

राम के अनन्य भक्तों, राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी राजकुमार महादेव के धनुष पर प्रत्यांचल यानी धनुष की डोरी चढ़ा देगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। और आज धनुष यज्ञ का वो पावन दिन आ गया है जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश देश से राजकुमार पधारे हैं। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी धनुष यज्ञ में आए। रंगभूमि की शोभा अवर्णनीय है। महाराजा जनक का मंत्री स्वयंवर में आए हुए राजाओं को राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनाई।

राजा जनक की शोक एवं व्यंग भरी वाणी सुनकर शेष अवतार लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोले, हे महाराज, सूर्यवंशी वीरों के होते हुए धरती को वीरों से खाली कहना अनुचित है। यदि भैया श्री राम जी आज्ञा दे तो मैं विध्यांचल पर्वत को फूंक मारकर मच्छर के समान उड़ा सकता हूं। इस धनुष की तो बात ही क्या। तो भक्तों, तब मुनि विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत करके श्री राम जी को कहा कि हे पुत्र, तुम उठो और धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाकर जनक के शोक दूर करो और उनकी प्रतिज्ञा

बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की जय जयकार से संपूर्ण ब्रह्मांड डोल उठा। नगर में बाजे बजने लगे। सज्जन लोग प्रसन्न एवं दुष्ट उदास हो गए। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। तभी शिव धनुष का टूटना सुनकर भगवान परशुराम जी रंग भूमि में आ पहुंचे। तन पर विभूति, विशाल ललाट पर त्रिपुंड, सिर पर जटा शोभायमान हो रही है, कांधे पर तरकस एवं एक हाथ में सुंदर फरसा धारण किए हुए है। सबने मुनिवर को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया एवं मुनि विश्वामित्र गले मिले

होने का नाम नहीं लेता। जब श्री राम जी ने शीश झुकाकर हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा कि हे देव, हमारा सिर तो सदैव आप ही के चरणों में रहा है, आपके चरण हमने छाती पर लिए हैं, ये कहकर श्री राम जी ने परशुराम जी को उनके पूर्वज भृंग ऋषि जी का पद चिन्ह अपने हृदय पर दिखाया। तब परशुराम जी समझ गए कि ये तो स्वयं श्री नारायण है। तब उन्होंने बारंबार श्री रामचंद्र जी की वंदना की और तप करने के लिए वन की ओर चले गए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र।

प्रभु श्री राम जी के भक्त जनों, इस प्रकार श्री राम जी और जनक दुलारी सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। बारात जिस समय अयोध्या वापस आई तो पूरी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया। माताओं ने सीता सहित चारों बहुओं की आरती उतारी, मंगल गान हुए। राजा ने बहुमूल्य हीरे मोती स्वर्ण गौ आदि दान किए। प्रभु प्रेमियों और श्री राम जी के भक्त जनों, जो भक्त प्रभु श्री राम जी के बाल चरित्र एवं विवाह गाएंगे अथवा सुनेंगे, उनके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद होगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम।

प्रेमी भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बाल लीलाओं का प्रथम कांड जो बाल कांड के नाम से प्रसिद्ध है यहां समाप्त हुआ और अब आप दूसरा यानी अयोध्या कांड सुनिए।

प्यारा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में यानी 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।

अमिताभ से भी आप सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो एक भजन है, और ये भजन हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों के लिए और सभी दुखी प्राणियों के लिए।

ही सुंदर शब्द हमने पेश किए हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं, तुम बिन जाऊँ कहाँ।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊँ कहाँ कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सम कभी तुमको चाह के। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों लता जी की आवाज़ में आप सुनेंगे इस बार, और फिल्म का नाम है कति पतंग, गीत का बोल है न कोई उमंग है न कोई तरंग है मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है।

0: घंटी के आइकन पर मेरे आने वाले।
1: अभी आप सुन रहे थे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या इकति पतंग है। उपहार है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माझी नैया ढूंढे किनारा।

अभी आप सुन रहे थे माझी नैया ढूंढे किनारा, मुकेश जी की आवाज़ में हमने ये गीत पेश किए हैं, फ्रॉम द मूवी उपहार से आपने सुने हैं। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सभी ने चुन किए हैं सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत शुरुआत करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं कि आधे घंटे तक लगातार हमने कुछ सेंटीमेंटल सॉन्ग्स आप सभी के वास्ते पेश किए हैं, और अब कुछ बदलाव हम लाने वाले हैं प्रोग्राम में। तो चलिए ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे अरे आने वाले आ तू देर ना लगा, और फिल्म का नाम है कहीं और चल, लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक फूल दो माली से हम पेश करते हैं सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।

एक फूल दो माली से भी आप सुन रहे थे। सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो गए तेरे हो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहां। फ्रॉम द मूवी यानी द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहां से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं प्रोग्राम में

आप सुन रहे थे हो गए तेरे हो गए प्यार में तेरे खो गए, ये ना पूछो कब क्यों और कहां। द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहां से हमने पेश किए हैं, आप सभी के वास्ते लता मंगेशकर जी आपको सुनाने वाले थे। रुक जा ए हवा फ्रॉम द मूवी शागिर्द से हम पेश करते हैं।

रुक जा ए हवा, थम जा ए बहार, भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। और जरा सा हम देखे तो सीता और गीता, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं एक और गीत है ये, जिसमें कुछ हवा की बातें आती है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हवा के साथ साथ घटा के संग संग और साथ ही चलो। घड़ी की ओर जबकि हम देखते हैं तो ठीक यानी समय हो चला है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हरी राय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश करते हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। फ्रॉम द मूवी बेताब से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। सरसा हम देखे तो फिल्म का नाम है बारिश। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला इकराम।

अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम है बारिश। इसी फिल्म से हमने पेश किया है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। सुनने वालों, कुछ सेंटिमेंटल सॉन्ग्स हम आप सभी के वास्ते पेश करने वाले हैं और उसके बाद में कुछ लव सॉन्ग्स भी हम चलाएंगे। बाजी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी,

अभी आप सुन रहे थे बाजी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, मिलन है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम तो पेश करने वाले हैं मैं तो दीवाना।

मुबारक हो सबको, समाए सुहाना भी आप सुन रहे थे मुकेश जी की आवाज़ में, और फिल्म का नाम है मिलन। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, फ्रॉम द मूवी हरियाली, और रास्ता से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, फ्रॉम द मूवी हरियाली और रास्ता से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। ये कली जब तलक फूल बन के खिले,

लता और महेंद्र कपूर जी मिलकर आप सभी को सुनाने वाले थे ये कली जब तलक फूल बन के खिले, फ्रॉम द मूवी आए दिन बहार के, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। साथिया नहीं जाना के जी ना लगे।

साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, अभी आप सुन रहे थे झील के उस पार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आपको सुनाने वाला है किशोर डा जी, क्या नज़ारे।

जिल के उस पार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं क्या नजारे, किशोरा आपको सुनाने वाले थे। गोरी ओ गोरी प्रेम कर ले ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा, किशोरा आपको सुनाने वाले है फ्रॉम द मूवी गाय और गोरी।

गोरी ओ गोरी प्रेम कर ले ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा। फ्रॉम द मूवी गाय और गोरी से भी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज़ में शर्मती तेरी आंखों की।

0: शर्बती तेरी आंखों की झील की गहराई में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों किशोर डा की आवाज में। बुरे भी हम भले भी हम, द टाइटल फ्रॉम द मूवी बनारसी बाबू।
1: बाबा हमारा नाम

0: द टाइटल फ्रॉम द मूवी बनारसी बाबू से अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। घड़ी की ओर जबकि हम देखते हैं तो ठीक 2 मिनट बाकी है 11 बजने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम पेश करते हैं विज्ञापन और विज्ञापन के बाद में आप सभी से फिर मिलने वाली हूँ।
1: Destiny Events presents Unforgettable Melodies of Bollywood Nagme with all renowned artists from Mumbai. Sarigama Pa winner Ishita Vishwakarma.

प्यारे प्यारे प्रभु भक्त आत्माओं, जैसे मैंने श्री रामायण के हर एक कांड में बतलाया कि ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है, इसीलिए बार बार हमें श्री रामायण जी का श्रवण करना चाहिए। तो आइए शुभारंभ करते हैं श्री रामायण जी।

भक्तों, मोर के कंठ की आभा के समान नील वर्ण पीतांबर धारी हाथ में धनुष धारण करने वाले वानर समूह से युक्त देवताओं से सेवित स्तुति किए जाने योग्य जानकी जी के प्राण आधार रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के अवध में आने का एक दिन बाकी रह गया, परंतु अयोध्या वासियों के लिए ये एक दिवस युग के समान हो गया है। श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा में कौशल्या केकई सुमित्रा भरत शत्रुघ्न एवं समस्त अयोध्या वासी सोच ही रहे थे कि श्री हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आकर भरत जी को प्रभु राम के आगमन की सूचना देते हैं।

अयोध्या नगरी में विमान उतरने के उपरांत प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान को वापस कुबेर के पास जाने की आज्ञा दी। प्रभु ने सुग्रीव, अंगद, विभीषण आदि से अपनी पावन जन्मभूमि अयोध्या एवं पवित्र सरयू नदी की विशेषताएं समझाई। उधर जब अवध के निवासियों ने विमान से श्री रामचंद्र जी को उतरते देखा तो अपना आपा भूलकर श्री रघुराई की ओर दौड़ पड़े। श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण तथा सीता जी ने गुरु तथा माताओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। भरत जी श्री रघुराय राम के चरणों से ऐसे लिपट गए जैसे सुंदर से वृक्ष पर अमर बेल लिपट जाती है।

भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तजनों, फिर शुभ मुहूर्त विचार कर कुल गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक का आदेश दिया। मंत्री सुमंत जी को बुलाकर सभी जगह निमंत्रण भेजने को कहा। अयोध्या नगर को दुल्हन की भांति सजाया गया। अभिषेक हेतु सातों समुद्रों एवं समस्त तीर्थों से जल मंगाया गया। माता कौशल्या केकई सुमित्रा फूले नहीं समा रहे। भरत जी ऐसे प्रफुल्लित हैं मानो विष पान के बाद किसी को प्राण दान मिल गया हो। राज्य अभिषेक की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं।

ब्रह्मा शिव एवं इंद्र आदि देवगण श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। हे हरि, हे दीनानाथ, आपकी माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, चराचर, जीव कर्म और गुणों से भरे हुए भी आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे प्रभु, जिन पर आपकी कृपा दृष्टि होती है वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाती हैं। परंतु जिन्होंने अभिमान में आपकी भक्ति का आदर नहीं किया वे ऊंचे पद पर रहकर भी अपने वास्तविक पद से नीचे गिर जाते हैं। जो श्री चरण श्री लक्ष्मी जी द्वारा सेवित हैं, हम उन चरणों में

श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त जनों, जानकी वल्लभ मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हो चुका है। चारों ओर श्री रामचंद्र जी की जय के शब्द गूंज उठे। प्रकृति मानो नृत्य करने लगा। देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। विप्र वृंद वेद मंत्रों का गान कर रहे हैं। जहां तहां शंख और घंटों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। फिर सायकाल में जब उत्सव समाप्त हुआ, तब श्री राम प्रभु ने विभीषण अंगद एवं समस्त वानर दल के ठहरने की उचित व्यवस्था करवाई।

प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद को प्रेम पूर्वक समझाकर उनके राज्य को भेज दिया एवं नीति धर्म मर्यादा का पालन करते हुए राज्य का संचालन करने लगे। उनकी देखरेख में अयोध्या राज के समस्त निवासी सुख पूर्वक रहने लगे। उनके राज्य में कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी। छोटे बड़े धनवान निर्धन का कोई भेदभाव नहीं था।

चोरी ठगी झूठ कपट का व्यवहार नहीं था। कभी कभी तो अयोध्या की खुशियों से देवगण भी ईर्ष्या करने लगते थे।

एक दिवस सुंदर अवसर जानकर श्री हनुमान जी ने करुणा निधान श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, श्री भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। श्री राम की अनुमति पाकर श्री भरत जी बोले, हे प्रभु, आपने वेद एवं पुराणों की बड़ाई की है, मैं संतों और असंतों के लक्षण जानना चाहता हूँ। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि हे भरत, संत और असंतों की करनी ऐसी होती है जैसे चंदन और कुल्हाड़ी का आचरण। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, कटु वचन नहीं बोलते तथा नियम और नीति से विचलित नहीं होते।

इसी प्रकार एक दिवस राजसभा में गुरु ब्राह्मण मंत्री आदि बैठे हुए थे। तब प्रभु श्री राम बोले, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, अच्छी लगे तो अनुसरण करना। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसे विषय भोगों में मत खोना। जो इस अवसर को खो देता है वह फिर 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता रहता है। जो मानव चोला पाकर मुक्ति का साधन नहीं करता वह आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जगत में एक ही पुण्य है, मन कर्म वचन से सिद्ध संतों के चरणों की सेवा करना।

सज्जनों, तब शिव जी बोले, उमा सुनो, जब दक्ष ने तुम्हारा अपमान कर दिया और तुमने प्राण त्याग दिया, तो मैं निराश सुमेर पर्वत के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी वृक्ष पर काकभुशुंडी रहकर श्री हरि का गुणगान करता था। मैं हंस का शरीर धारण कर उसके पास गया, तभी गरुड़ जी भी वहां आ गए। गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से कहा कि हे काकभुशुंडी जी, मुझे भी अपार सुख देने वाली पवित्र कथा सुनाओ। तब काकभुशुंडी जी ने गरुड़ को श्री

प्रिय भक्त आत्माओं, काकभुसुंड जी कहते हैं कि कलयुग में किसी भी जन्म में जो अवध में बस जाता है वो श्री राम जी के परायण हो जाएगा। परंतु काल का ऐसा प्रभाव था कि सभी लोग मोह के वश में हो जाते हैं। इस युग में पंडित वेदों को बेचने वाले, राजा प्रजा को ही खाने वाले होते हैं। कलयुग में पंडित वही होता है जो आडंबर रचता है, शुद्ध ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं, स्त्रियां पर पुरुष का साथ करती है और पुरुष पर स्त्री का साथ करते हैं। सिद्ध ब्राह्मण तथा सिद्ध गुरु की हत्या होती है, अनेकों शिष्य पापी होते हैं। अर्थात कलयुग में चहु

तो काकभुशुंडी जी बोले, हे पक्षीराज, उस कली काल में मैं अयोध्या में रहा, परंतु अकाल पड़ने पर मैं कहीं और चला गया और शिव की पूजा करने लगा। वहां एक दिन मैं पूजा कर रहा था और मेरे गुरु जी आ गए। मैंने उनको देख कर भी प्रणाम नहीं किया, अर्थात मुझ जैसे मूढ़मति अज्ञानी ने गुरु का अपमान किया। उसे गुरु तो सहन कर गए, परंतु देवाधिदेव शंकर भगवान ने क्रोध करके सर्प बनकर पेड़ की खोखड़ में जाकर रहने का श्राप दिया। हे पक्षीराज, मेरे जैसे मूढ़ अज्ञानी के लिए यही दंड उचित था।

हे गुरु जी, जब लोमस ऋषि से मैंने ब्रह्म के विषय में पूछा तो उन्होंने मेरी चतुरता एवं अधीरता पर क्रोध करके मुझे फिर से कौवा बनने का श्राप दिया। मैं कौवा बनकर उड़ चला। मुझे अपना ये काक शरीर इसलिए पसंद है कि मैंने इसी रूप में प्रभु श्री राम के दर्शन पाए थे और सब लीलाएं देखी थी। फिर गरुड़ जी ने काक भुशुंडी से पूछा कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। सज्जनों, तब काक भुशुंडी जी ने बड़े प्रेम से गरुड़ जी को ज्ञान और भक्ति का भेद समझाया।

भक्तवत्सल सच्चिदानंद स्वरूप परम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अतिशय प्रिय भक्तों, काकभुसुंड जी ने गरुड़ जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य के अनेक भेद बतलाए। उन्होंने मानव शरीर को सर्वोत्तम बतलाया, क्योंकि मानव को प्रभु ने बुद्धि विवेक चेतनता प्रदान किए हैं। स्वतंत्र रूप से कर्म करने योग्य केवल मनुष्य शरीर है, परंतु यदि कोई मनुष्य तन पाकर भी पशुओं की भांति आचरण करता है तो इसमें प्रभु का अथवा अन्य किसी का क्या दोष। अतः मनुष्य को मोह माया से ध्यान हटाकर श्री राम प्रभु के चरणों में ध्यान एकाग्र करना चाहिए।

0: प्रेमियों, इस उत्तरकांड की विशेषता यही है और इससे यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु की परम कृपा से यह मानव शरीर मिला है। इसको यूं ही अहंकार और भौतिक सुखों में व्यतीत कर दिया जाए तो फिर हमारा चारों तरफ से पतन ही पतन, मतलब हानि ही हानि है। भगवान शंकर हमें ये खुद समझा रहे हैं कि मानव शरीर पाकर जो दुराचारी बना उसकी गिनती अधम में यानी पापियों में होती है। प्रभु का ध्यान, प्रभु की भक्ति मानव के लिए सुरक्षा कवच है। प्यारे प्यारे प्रभु भक्त आत्माओं, मैं आपका गोपाल परदेसी बाबा, जिसने आपको श्री रामायण के सातों कांडों का हृदय से भाव विभोर होकर सरल रूप और भावपूर्ण तर्ज में श्रवण कराया, इस श्री रामायण को इस सरल रूप में आपके सामने रखने की मेरी यही अभिलाषा है कि आज के समय के युवा वर्ग भी इससे प्रेरित हो और अपने जीवन को मंगलमय व आनंदित बनाए। इस श्री रामायण गाथा को पूरा करने में मेरी अर्धांगनी राधा जी का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से ये सब संभव हो पाया है। सज्जनों, अगर इस गाथा को श्रवण कराने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूँ। मैं आपका सेवक, भजनी का उपदेशक गोपाल परदेसी बाबा फ्रॉम नीदरलैंड। जय श्री राम।
1: श्वास श्वास पर प्रभु का नाम लो। किसी भी श्वास को व्यर्थ न खोने दो, क्योंकि क्या पता कि अगले श्वास आए या ना आए।

जिसका मन भगवान में लगा रहता है उसे सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के दरबार का सदस्य है।

करेंगे ये निश्चित नहीं है, पर मरेंगे ये निश्चित है। ये ही जीवन का सत्य है।

ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद

सुनने वालों की सेवा में मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। जो बीमार है भगवान से यही प्रार्थना किया जाता है कि आपके तंदुरुस्ती में परिवर्तन आए। जिनके परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा और बधाई दिया जाता है। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें बहुत से बधाई भी और मंगलमय दिवस प्रस्तुत है। जो अपने नौकरी की ओर पढ़ रहे हैं उनके ये कहूंगा कि हर बार की तरह मत भूलना कि गांधी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये मत सोच हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। जब ये माइंड आप में होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होगा।

जहाँ सच्चाई है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ विजय ही विजय है।

तैयारी कर रहे हैं स्कूल के ओर बढ़ने के लिए, तो उनके लिए ये कहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। क्योंकि नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नर उतात्मम देवीम सरस्वती व्यासो ततो जय मुद्रियत। क्योंकि माता सरस्वती का देन बुद्धि और ज्ञान है।

सरस्वती जो आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि एवं स्मृति का वरदान दे। माता की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बने रहे। और जो हमारे देश में सफर पे आए हैं तो उन्हें हार्दिक से स्वागत। स्वागत करते हुए ये कहूंगा कि आप दुनिया के एक ऐसा सुंदर देश में आए हैं जहां जो स्वर्ग के समान कहा जाता है। अनलॉन्ग फॉर्मेट मिशेयस यहां जो रहते हैं अपने शहर को छोड़कर बगल वाले शहर को जब उस पे दृष्टि डालते हैं तो देखा जाए कि कितना बसीन स्वार्थ खेद भी है।

यहाँ सुंदर सुंदर मंदिरों भी है। जैसे कि अलमेर पैटा में श्री विष्णु मंदिर, दनहाक में सेवाधाम मंदिर, देव मंदिर और राधे कृष्ण मंदिर और राम मंदिर, अगर आप अंस्कदे में रहते हैं तो वहां भी एक मंदिर है, आरनहेम में शिव मंदिर, रोटरडम में शिव मंदिर जो नीचे गुफा के तरह, जरूर जाकर देख जाना। श्रीमती विमला जी जो दनहाक के निवासी है, उनके ओर से ये सुंदर सा शिव तांडव प्रस्तुत करता हूँ।

कौशिक नामक एक ब्राह्मण बड़ा तपस्वी थे। तप के प्रभाव से उसमें बहुत आत्मा बल आ गया था। एक दिन वे वृक्ष के नीचे बैठे हुआ था कि ऊपर बैठे हुए चिड़िया ने उस पर बीट कर दिया। कौशिक को क्रोध आ गया, लाल नेत्र करके ऊपर को देखा तो तेज की प्रभाव से चिड़िया जलकर नीचे गिर पड़ी। ब्राह्मण को अपने बल पर गर्व हो गया। दूसरे दिन वे एक सद गृहस्थ के यहाँ भिक्षा मांगने गए। गृहस्थमी पति को भोजन परोसने में लगी थी। उसने कहा कि भगवन थोड़े देर और ठहरो, अभी आपके भिक्षा दूंगी। इस पर ब्राह्मण को क्रोध आया कि मुझे जैसे तपस्वी की अपेक्षा करके ये पति सेवा की अधिक महत्व दे रही है। और तभी गृहस्वामिनी ने देवी दृष्टि से सब बात ज्ञान ली। उसने ब्राह्मण से कहा कि क्रोध ना कीजिए, मैं चिड़िया नहीं हूँ। अपना नियत कर्तव्य पूरा करने पर आपकी सेवा करूंगी। ब्राह्मण क्रोध और करना तो भूल गया। उसे ये आश्चर्य हुआ कि चिड़िया वाली बात इसे कैसे मालूम हुआ।

स्त्री जो ब्राह्मणी थे उनसे पूछने लगा कि ये चिड़िया वाला बात आपको कैसे पता। तभी ब्राह्मणी ने इसे पति सेवा का फल बताया और कहा कि इस संबंध में अधिक जानना हो तो मिथिलापुरी में तुलाधार वैश्य के पास जाइए, वे आपको अधिक बता सकेंगे। भिक्षा लेकर कौशिक चल दिया और मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जाकर के पहुंचे।

कौशिक जब मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जा पहुंचे तो क्या होता है कि वहां तौल और नाप के व्यापार में लगा हुआ उसने ब्राह्मण को देखते हुए प्रणाम अभिनंदन किया और कहा, तपो धन कौशिक देव जी, आपको उस सत गृहस्थ स्वामिनी ने भेजा है, सो ठीक है, अपना नियत कर्म कर लो, तब आपकी सेवा करूंगा, कृपया थोड़ी देर बैठिए। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बिना बताए ही इसे मेरा नाम तथा आने का उद्देश्य कैसे जाना।

आश्चर्य से घेरे हुए कौशिक बैठे सोच रहे हैं। थोड़ी देर में जब वैश्य अपने कार्य से निवृत्त हुआ तो उसने बताया कि मैं ईमानदारी की साथ उचित मुनाफा लेकर अच्छे चीजें हित की दृष्टि से बेचता हूँ। इस नियत कर्म को करने से ही मुझे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अधिक जानना हो तो मगध के नीच जाता चंडाल के पास जाइए और कौशिक मगध चल दिए और चंडाल के यहाँ पहुँचे।

चलते चलते कौशिक धीरे धीरे मगध आकर के पहुंचे जहां चांडाल का निवास स्थान था। वे नगर की गंदगी झाड़ने में लगे हुई थी। ब्राह्मण को देख करके उसने साष्टगन प्रणाम किया और कहा, भगवान आप चिड़िया मारने जितना तप करके उस सद्गृहस्थ्य देवी और तुलाधार वैश्य के यहाँ होते हुए यहाँ पधारे है, मेरा सौभाग्य है। मैं नित्य कर्म कर लूं तब आपसे बात करूंगा, तब तक आप विश्राम कीजिए।

कौशिक ब्राह्मण आश्चर्य से डूबे हुए और इंतजार कर रहे हैं और चांडाल सब सेवावृत्ति से निवृत्त हुआ तो उन्हें संग ले गया और अपने वृद्ध माता पिता को और दिखा कर कहा, अब मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं नियत कर्तव्य कर्मों निरंतर लगा रहता हूँ, इसी से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है।

सारे वृतांतों को देखते हुए तब कौशिक की समझ में आया कि केवल तप साधना से ही नहीं, नियत कर्तव्य कर्म निष्ठ पूर्वक करते रहने से भी अध्यात्मकता का लक्ष्य पूरा हो सकता है और सिद्धि मिल सकती है।

सृष्टि का संदेश आप भी समझ गए होंगे। हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले श्रीमती विमला जी, उनके ओर से गीत को मांग किया गया।

की कहानी तेरी आत्मा भी जाने और परमात्मा भी जाने। धन्यवाद दिया जाता है कि श्रीमती विमला जी जो अपने ओर से ये सुंदर सुंदर गीतों को खोज करके हमारे लिए भेजे हैं। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए

सत्य है, राधा अनंत है, राधा अनादि है, राधा भगवंत है, राधा अवकार है, राधा ब्रह्म है, राधा शक्ति है, राधा भक्ति है, राधा सबके है।

कहते हैं कि त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ है, मानवता संपत्ति से श्रेष्ठ है, परंतु संबंधों के बनाए रखने से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो एक सुंदर सा गीत और जो श्रीमती विमला जी हमारे लिए भेजे हैं, तो हम उसे सुनाने को कोशिश करूंगा।

तो मिला है, पता नहीं फिर कभी मिलेंगे या नहीं, पर इतिहास ये भी बताते हैं कि जिससे बराबरी नहीं हो पाती, लोग उसकी छवि खराब करने में जुट जाते हैं। शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ।

फिल्म से निकाला हुआ ये सुंदर सा गीत एक नया फिल्म है जिसमें आहान पांडे जो काम किए हैं और मेरे ख्याल से ये आहान कोई और नहीं है चौंकी पांडे का भांजाल यानी कि उनका नेफ कहा जाता है। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ नए नए गीतों के साथ हम कुछ समय तलक आपके साथ व्यतीत करेंगे। दूसरा गीत जो हमने प्लेयर पर खोज करके रखे हुए है एक फिल्म जो 2025 में नई खंती मार्च में जो जिसका प्रीमियर हुआ है उससे पहले कितना पैसा कमा चुका थे और फिल्म जो एक मारतार वाला फिल्म है खूब धुरंधर नाम जिनमें रणवीर कपूर रणवीर सिंह ने काम किया ना रणवीर सिंह ने काम किया है और आदित्य धार जो ये फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। तो इसमें भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ देखते हैं और प्लेयर पे तो चुन करके मैंने रख चुका है तो चलाते हैं और देखते हैं उसमें क्या और...

एक फिल्म जिससे बॉलीवुड काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, और एक फिल्म जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ समस्याएं इसमें रखा गया है। दूसरा भाग जो बनाया गया है वो लगभग 4 घंटे के है, और एक फिल्म जिसे हम लगातार देखते रहते हैं। हमने तो कहा गया कि बियोस्कोप में ऐसा होता है माहौल कि शायद इंटरफॉल भी नहीं रखा जाता है, और कोई उठकर जब वहाँ से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि ये इतना सुंदर रूप में अब बनाया गया है कि आप सौ न्यूज़ रखे हम नाटक कहकर। इसी प्रकार से और भी फिल्मों जो बॉलीवुड 2025 और 2026 में रिलीज करने वाले, एक और भी सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, कोई और नहीं और जिसमें अक्षय खन्ना और जानवी कपूर के

सौ कोई और नहीं, बस सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो। और एक फिल्म जिसमें अक्षय खन्ना, जानवी कपूर ने काम किए, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग जो 2025 में आया। अगला गीत हमने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, सुनने वालों, टाइगर 3, सलमान खान और कतरीना का फिल्म।

का नाम, तो सब कहते हैं कि कोई भी काम करो तो लेकर प्रभु का नाम। तो यहाँ तो अपना संगीत में उन्होंने ये रखा कि म्यूजिक स्टार्ट करो तो लेकर प्रभु का नाम, पर कहने के तात्पर्य ये है कि कोई भी काम शुरुआत करो तो प्रभु का नाम लेकर। अगला सॉन्ग जो हमने चुन कर रखे हुए है वो हम सफ़र मेरे, शाहिद कपूर और कृति सनान। एक रोमांटिक सॉन्ग है जो भी नया 2026 में और ये फिल्म रिलीज किया गया।

सुनो वालों, ये सुंदर सा गीत निकाला गया एक फिल्म जिसमें शाहिद कपूर ने 2026 में फिल्म रिलीज हुआ और हम सफ़र मेरा। हम अगला गीत जो चुन करके रखे हुए हैं और अगला गीत का बोल ऑल्सो बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं और इसमें क्या संदेश रखते हैं, किस प्रकार से अपना रोमांस को और रखते हैं।

तू ही मेरा आज और तू ही मेरा कल, अ हिंदी इंग्लिश डुएट जो एत शेरान और श्रिया घोषाल अपने आवाज में रखे अति सुंदर रूप से और अपना रोमांस को प्रकट किए। दोस्तों हम अगला गीत जो दिल तेरा नाम रणवीर सिंह जिस फिल्म में काम किया है 2026 में जो रिलीज हुआ धुरंधर उससे एक और गीत रखेंगे।

0: समझ रहे हो, ये जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: ये भूत बंगला जो फिल्म बनाया गया है और 2026 में रिलीज होने वाला है, प्रिया दर्शन फिल्म, जो काफ़ी दिनों से प्रिया दर्शन ने फिल्म नहीं बनाए थे और अब अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ जो ये फिल्म बनाया गया है, एक भूत बंगला जो एक कॉमेडी फिल्म में कहा गया है। और प्रिया दर्शन के फिल्म में तो कॉमेडी और कुछ उस हर एक फिल्म में उसका देखा जाए कि लोग एक दूसरे के पाछे दौड़ते तो जरूर है। और अभी तो रिलीज नहीं हुआ पर हाल ही में रिलीज होने वाला है। और अगला गीत जो हमने चुन करके रखे हुए दोस्तों प्लेयर पे, वो भी एक 2026 का फिल्म जो कि इमरान हाशमी और राशि खन्ना का फिल्म है, रोमांटिक सॉन्ग दिल में तू।

0: Dus.
1: Wiwan, wanneer is deze film, want je zei net 2003 volgens mij, hè? Enig idee welke datum hij, je release datum, wanneer is dat geweest?
2: 28 november
1: 2003. 28 november 2003. Ja, je hebt nog een, je zonder zaagiet, je... कल होना हो के इंस्ट्रूमेंटल से कार्यक्रम को चलाया जाता है इसमें इन्वेस्ट कितना किया गया विवान
2: रोंड फॉक्स में 30 करोड़ सोइट्स
1: रोंड 30 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया गया और एक फिल्म बनाया गया जो हिंदी में निकाला गया ना
2: या क्लब
1: तो इसी फिल्म से कोई और गीत अभी आप चुन करके रखने वाले हैं हमारे सुनने वालों के लिए सुनो लो विमान जो और भी संदेश अभी बॉलीवुड के अंतर्गत में हम सबको सुनाने वाले हैं

2003 में बनाया गया कल होना हो, एक फिल्म जो करण जौहर ने और बनाई, एक फिल्म जिसे हम सालों साल हमारे दिल में बसे रहेंगे। मैं यहाँ तक आपके साथ जुड़े रहे, हमारे साथ देने वाले विवान भी, और आपको हार्दिक से धन्यवाद देते हुए नमस्कार।

0: Julia.
1: Dinner ready?
0: Not tonight, darling. Michael?

पर बाबूजी नहीं सुनेंगे आप, हम आपको लेकर कर चलते हैं सुनने के लिए कि पुकारता जला हूँ मैं ओ पिनैयर के साज और संगीत पर।

सुख और दुख, सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियों हो तो, और अगर किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है।

हावड़ा ब्रिज से ये सुंदर सा गीत यहाँ से हम लोग को मिलकर श्रवण की है और आशा भोसले जी की आवाज में। सफल वही होता है जो दूसरों की बातों पर नहीं बल्कि खुद की मेहनत पर भरोसा करता है।

का नाम नया दौर, जैसे हमने आपको बता दी है, और यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए। हम ज़रूर से साथ में मिलकर सुनेंगे फिल्म का नाम बाहर आए।

तुलसी जी के आवाज में कि आपकी हसीन रूख में ये नया नूर है आपके लिए पेश किया जाता है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, ये जिंदगी जो है आपकी और मेरी तो आसान कैसी होगी, आसान हो गई तो जिंदगी कैसी होगी। शतरंज हो या जिंदगी जीतने के लिए धैर्य जरूर।

उनका नाम एक बार फिर आपको दोहरा कर सुना देती हूँ। आप आई हसीन रुख बहार की, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। Soms geven de donkere plekken de helderste kleuren.

शीले गीतों की बहार आप ही के लिए सुनने वालों की बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का नाम। लाखों की नहीं विचारों की बात कीजिए, लाखों की नहीं बल्कि विचारों की बात कीजिए। दूसरों से पहले खुद से मुलाकात कीजिए।

फिल्म का नाम कश्मीर की गली। रफ़ी जी की आवाज़ में यादों को ताज़ा करने की वक्त है।

है कि किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, किसी के साथ गलत करके अपने बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। विश्वास वो परिंदा है, विश्वास वो परिंदा है जो एक बार उड़ा तो दोबारा हाथ नहीं आता।

कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि अपने पास पैसा रखो, मुसीबत के समय में काम आएगा। लेकिन बात ऐसा है कि भगवान पर यकीन रखो तो बुरा समय ही नहीं आएगा।

जब हम अपने रिश्ते के लिए जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच

جس کام سے دو وقت کی روٹی بھی نہ مل سکے وہ کام کسی کام کا نہیں۔

झूठा ही सही, झूठा ही सही, मुस्कुराते रहना ज़रूरी है, मुस्कुराते रहना, उदास देखकर लोग

0: आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है,
1: खुशबू की सदाओं से सितारों की हदों तक
0: इस शहर में सब कुछ है, बस तेरी

0: जोबिन नौतिया रखेगी ते दिल कर दिल गलती कर बैठा, हम सुनेंगे कवाली कवाली रूप में।
1: कातुन कांतोर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar
5: Hindustani
4: Radio,
5: Radio Fahun. Digitale radio, fahunfm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
7: Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden na een verslechterde gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat al sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Zijn opvolger is zijn 53-jarige zoon Haakon. Willem-Alexander, Maxima en Beatrix reageren intens bedroefd op het overlijden van de Noorse koning. Ze herinneren zich zijn liefde voor zijn land en hun gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo. Ondanks de regen zijn de droogteproblemen nog lang niet voorbij en het is onzeker of het grondwater voor het voorjaar voldoende is aangevuld. Nederland is voor ongeveer 60% van het drinkwater afhankelijk van grondwater. Door de toenemende droogte grijpen volgens experts ook boeren hier steeds vaker naar terug, terwijl maatregelen om het gebruik van grondwater te beperken momenteel ontbreken. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar besloot toch niet in te grijpen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. Nieuwe forse regen- en onweersbuien trekken vanmiddag het land over. Lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Aan het eind van de middag concentreert de neerslag zich vooral boven het oosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
9: जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम सभी को राम राम नमस्कार अदाए बरस कहते हैं। हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रस की तरह हमेशा की तरह आज भी होगी कुछ मीठी मीठी प्यारे प्यारे ऐप द्वारे कुछ बातें। चलो दोस्तों, हम आज फंदा के फ्राइडा 28 अगस्त हो चुका है 2026 में हम आ चुके दोस्तों। जैसे आप जानते हैं तो शुक्रवार के हमारा प्रोग्राम है, अब से लेकर 3 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे, जहां तक ये आवाज़ पहुंचे, हमारा ढेर सारा पैगाम पहुंचे, मोहब्बत पहुंचे हर एक घर में, जहाँ पे कोई बीमार है, लाचार है या और कुछ है, उसके दुख में हम शामिल है। भगवान ऊपर वाला उसे इतना सहन शक्ति दे, अपना हर चीज़ सहने के लिए, दुख है पीड़ा है हर चीज़ सहने के लिए, खुशी में भी हम, हमारा पूरा टीम भी आप लोग के साथ है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है मैं बताना चाहता हूँ, आज रक्षाबंधन है, नॉर्मल फंदाख मार इस क्षेत्र के लिए, और कुछ वजह है जिनके कारण कि आज रक्षाबंधन नॉर्मल ना अरे आएगा हफ्ता भर है, लेकिन कल रक्षाबंधन थे, आज भी रक्षाबंधन है। जो नहीं बहन पाया है बहन भाई को, आज हफ्ता भर है, आप कर सकते हैं। कुछ गाने होगी रक्षाबंधन के, एक दो गाने होगी, उसके बाद कुछ हिले मिले जुले गीत होगी। हमारा प्रोग्राम है दोस्तों, आप जानते हैं, सवाल जवाब है, सवाल भी होगा जवाब भी होगा, वो भी प्रोग्राम में, और कुछ चुनमुन वाली गाना भी हम करेंगे क्योंकि आज वीकेंड हो चुका है। फ्रेडाग फिर से आज फ्रेडाग है, अख्तन ऑर्केस्ट्रा हो चुका है, वीकेंड आ चुका है। कुछ ऐसे गाने भी होगी जहां पे आप लोग तनी हिल सकते हैं, डोल सकते हैं। और आज जुमा भी है, हर एक को, हर एक हमारा मुस्लिम भाई बहन को जुमा मुबारक हो, सलाम अलैकुम कहते हैं। अल्लाह ताला आप लोग के हर एक गुनाह से बचाए, हर एक बीमारी से बचाए और हर एक दुआ दुआ आप लोग के कबूल किया जाए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। जैसे मैंने कहा है कि कुछ गाने होगी जो काफ़ी दिल में लग जाते हैं, काफ़ी सोचने वाली बात है, काफ़ी अच्छे गाने हैं और कुछ गाने मैंने सेलेक्ट करके रखा है, प्रोग्राम को बना करके रखे हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम रहेगी वैसे से हम आप लोग के ज़रूर बताएंगे। नाम सही लगती हूँ फन फाहून हिंदुस्तानी रेडियो के, हम सबको एक बार फिर से राम राम नमस्कार हो। और हम चलाते हैं देखा जाए फिल्म खेल खिलाड़ी का एक बहुत ही अच्छा गाना जो मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया है।

राखी एक ऐसा बंधन है जो सदा बंधना चाहिए और भाई बहन का प्यार कभी कम होना नहीं चाहिए। इसका जो लायरिक्स लिखा गया है राजेंद्र किशन है और इसका म्यूजिक जो है कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे और हमने चलते हैं किशोर कुमार की आवाज़ है और एस दे बर्मन का म्यूजिक है, आनंद बख्शी का लायरिक्स है।

0: हजारों में।
1: जी हाँ दोस्तों, एक हजारों में मेरी बहना है, सच ही कहा है, बहन जैसा चीज दुनिया में और कुछ नहीं है। भाई बहन का प्यार सदा सदा रहना चाहिए और मिल के सदा, बहन का भाई का फर्ज है बहन को देखने के लिए, देखने के और बचाने के लिए, हर एक मुसीबत से बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। देखा जाए तो मूवी रेशम की डोरी से नहीं कंदी फिर से फंदक से बहुत अच्छा रक्षा बंधन के गाना है, राखी का गाना है और हम आपको जरूर सुनाएंगे। आज रक्षा बंधन है नॉर्मल।

जी हाँ दोस्तों, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, क्या गाना है। और हर एक नाता जो है, जो रिश्ता बन चुका है, वो रिश्ता ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है, हमारे सुनने वाले आप सब चुन है द एफग्री लव ऑन हिंदुस्तानी रेडियो से। मैं हूँ आपके खिदमत में अनिल सारजू।

जी हाँ, सुनने वाला, इसी को कहते हैं भाई बहन का प्यार। बहन बोले जय जैसे भाई है, लेकिन हमार भाई है। ठीक है दोस्तों, इसी का नाम है रक्षा बंधन। आज राखी साल में एक बार आता है, बार बार नहीं आता है। प्यार से मनाइए, दिल से मनाइए, और हम चलते ही फिर एक बार। बहुत ही अच्छा गाना है भाई बहन के लिए।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्या गाना है, भाई बहन का नाता का, रक्षाबंधन का ये एक ऐसा गीत है जो काफी अच्छे है। चलो हम आपको ले चलते हैं फिर से देखा जाए रक्षाबंधन के एक और सॉन्ग से। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक बहन, हर एक बेटी माँ भी होती है। हर एक बहन, बड़ा बहन सदा माँ जैसा है और सदा माँ के फर्ज भी निभाते हैं अपने भाई के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ भी कि आज का प्रोग्राम जो सवाल जवाब का, एक बार मैं इस सवाल को फिर से पूछना चाहता हूँ। जो सही हल देगा सही गाने को मांग सकता है, इन तदीर फरमाई से हम चलाएंगे। और अभी तो हम कुछ गाने चलाएंगे ऐसे, और कुछ भक्ति गाने भी होंगे। और सवाल मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, कौन ची और हे भी है दान एगो हाथी, वाते स्वर्ग दान एन हाथी, एक ओलीफान से और कुंची है बीबा। एक आमतौर ढेर जने दे चुकल है, हर एक काफी लोग जो सही जवाब को दिया है, दूर दूर से लोग जवाब को पठाया है। और अभी मैं 1 बजे से 3 बजे तक आपका, हमारा सवाल जवाब का गाना भी होंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं दोस्तों,

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कि एक बड़ा बहन अगर माँ बन जाते हैं, माँ के रूप में आ जाते हैं, तो क्या वो माँ नहीं है? उसे बड़ा माँ तो और कोई नहीं है। जो भाई बहन, भाई और माँ का रिश्ता है, इसलिए मैंने इस गाने को आप लोग के सुनाया हूँ। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। अभी आधा घंटा और है जो हम चलाएंगे, 25 मिनट और है राखी का गाना, उसके बाद हम चेंज करेंगे अपना प्रोग्राम।

जी दोस्तों, मेरी भैया अभी आप सुन रहे थे, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के उपलक्ष पर हम कुछ ऐसे से गाने आप लोग के सुनाते हैं। हम आप लोग के लिए चलते हैं कुछ, देखा जाए, एक बहुत ही अच्छा गाना है जो हम सब सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, देखा जाए उदित नारायण की आवाज़ और मूवी अनारी से निकाला ये गाना है। चलो दोस्तों, मैं एक रक्षाबंधन के एक गाना और सुनाते हैं, उसके बाद हम चलते ही अपना दूसरा प्रोग्राम में, दूसरा भाग में एक गाना और चलेगा, उसके बाद कुछ न्यूज़ से रिक्लाम है, उसके बाद हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे।

0: जी हाँ, हमारे दोस्तों ये भी भाई बहन का एक गीत था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम एक घंटे का प्रोग्राम चलाया है राखी का। हम अब चलतेंगे, न्यूज़ और कुछ रिक्लाम होगी, उसके बाद हम फिर आएंगे। लेकिन जाने से पहले मैं इस सवाल एक बार फिर से कहना पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज स्वार्दर दर एन हाथी एन ओलिफेंट। काफ़ी लोग बोल चुका है, अच्छा, और अभी लाइन खुला है। तार का नंबर है 9 फिर 3 8 3 3 2।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: दिस इज इट वाहन हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज। गुडमिदाग, इक बिन एडविन फान गेलोव।
3: NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. Uit onderzoek van het journalistieke platform Argos blijkt dat gemeenten nauwelijks optreden tegen verhuurders die te veel vragen voor studentenkamers. Utrecht en Nijmegen deelden geen boetes uit. Van de 2637 onderzochte advertenties op Kamernet zijn 6 op de 10 kamers te duur. In het Weense Museum voor Toegepaste Kunst is een diamanten halsketting met 673 diamanten gestolen. Het is eigendom van de Egyptische koningin Nasli. Twee mannen sloegen gistermiddag een vitrine in en vluchtten. Het sieraad werd in 2015 voor $4.3 miljoen geveild. De verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 से लेकर शाम को 5 तक। अब टेलीफोन नंबर 9 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Jiha, dosto, bhi aap sune the news aur kuch reklama the. Theek hai dosto, hum chalte hain jo program maine bana karke saja karke aap tak laaye लाने वाला हूँ। वो एक घंटा एक और आधा घंटे का प्रोग्राम हो गए, कुछ डांस नंबर हो गए, क्योंकि वीकेंड हो चुका है, वीकेंड आ चुका है दोस्तों। इस वक्त घर पे जरूर कुछ पक रहा है, जो घर पे है कुछ खा रहेंगे, और खाने के इस समय पे आप जानते कुछ चुनमुन वाला गाना हो जाए, क्योंकि वीकेंड हो चुका है। फ्राइडे हो चुका है, घड़ी की तरफ देखा जाए तो 24:12 हो चुका है दोस्तों। अब से लेकर 3 तक हमारा तुम्हारा साथ रहेंगे, और जहाँ तक आवाज़ भी पहुँचे वहाँ तक हमारा प्यार भरा मोहब्बत पहुँचे। हम चलते हैं आप लोग के लिए, चलते हैं, भूल मत जाना, सवाल पे जवाब दीजिए और अपने गानों को मांग लिए, यूज़ कर सकते हैं, हर एक गाना आप मांग सकते हैं। हमारा फरमाशी जो है, हमारा जो लीडर है, हर एक आज गाने को मांग सकता है। राखी के गाना मांगेगा, लेकिन क्या आपको मांगना है, सही जवाब पे आप जो भी गाना यूज़ करेंगे हम आप लोग के कानों तक लाएंगे और सुनाने वाला है। सुरीनाम से लोग, दूर दूर से लोग इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं। और भूल मत जाना दोस्तों, आप सब चून है द एवरग्रीन लव फ्रॉम हिंदुस्तानी रेडियो पे, जो देनहाग शहर से होते हैं। हमारा स्टूडियो है देनहाग शहर से। चलो हम सुनाते हैं चुनमुन वाली गाना क्यों न्यू स्टाइल में।

जी हाँ दोस्तों, चुमा चुमा भी आप सुन रहे थे, चुनमुन वाली गाना हम आप लोग के सुनाते हैं। अगले गाने मैंने चुन पे रख चुका हूँ, वक्त नहीं है, हम वक्त ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम आप लोग सिर्फ गाने सुनाते क्योंकि वीकेंड हो चुका है दोस्तों। चुनमुन वाला गाना जो पकाते हैं खाते हैं और जो रास्ते पे है गाने को सुन रहा है, हम सब सुनने वालों के लिए इस गाने को चलाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, शरारत लगा नैना सवाल। चलो दोस्तों, ये था चुनमुन वाला गाना, हम आप लोग के लिए चलते हैं कर दे मुश्किल जीना इश्क। और देखा इस सोनू निगम अलका याग्निक आवाज है, अनु मलिक का म्यूजिक है और जमीर का लाइरिक्स है।

0: इश्क बबुआ।
1: कहते हैं कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। जी हाँ दोस्तों, ये था चुनमुन वाला गाना और हम अभी आपको ले चलते हैं दूसरी चुनमुन वाला गाना चकनी चमेली। देखा जाए श्रिया घोषाल का आवाज है, अजय अतुल का म्यूजिक है, अमिताभ भट्टाचार्य का लाइव से। आज फ्रेडा हो चुका है दोस्तों, इसलिए सिर्फ चुनमुन वाला गाना।

0: डोगरी की एक बरसाती में रहने वाला। आज यहां आया है मुंबई बेचने। बदले में कुछ तो चाहता होगा।
1: जी हाँ दोस्तों, बदले में तो जरूर कुछ चाहिएगा ना। श्रिया घोषाल की आवाज अभी आप सुन रहे थे और चिकनी चमेली अजय अतुल का म्यूजिक है, अमिताभ भट्टाचार्य का ये लाइरिक्स है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं, जैसे वादा किया था वादा के मुताबिक हम आप लोग के लिए चलते हैं। और चलो चुनमुन करते हैं बाबा बाबा, देखा जाए कौन गाना है बाबा।

0: जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे या बाबा बाबा बाबा, क्या गाना यार, क्या अंदाज में गाने को गाया गया है। और चुनमुन वाला गाना है, डांस का दूसरा नाम है चुनमुन। चलो हम आप लोग के लिए चलते हैं म्यूजिक क्वीन। इसका म्यूजिक जो है अमित ने बजाया है और अफिता दत्त जी इस गाने को लिखा है। ये भी कुछ भड़कती हुई गाना है। सुखवार है, वीकेंड हो चुका है दोस्तों, और इस वक्त तो ट्वेल्व हो चुका, लोग बैठ के जरूर कुछ ना कुछ घर पे खा रहा है, और खाने के वक्त पे ये गाना है।
1: चली आ गई, उधर करो, फिर चली गई।

जी हाँ दोस्तों, हम तो कहते हैं हम आपको पूरा दिन हाँ के शहर घुमाती, मार्केट में घुमाती, हाँ से मार्क में घुमाती, मछली दिखाई और आम दिखाई, लेकिन यहाँ पे पूरा लंदन घूमा पे बारे बाप। ठीक है दोस्तों, यही था सुखवार है ना, सब कुछ चलेगा, फ्राइडा वीकेंड आ चुका है और सब चीज चलेगा। चलो हम देखते तो चीज भरी है मस्त मस्त न्यू स्टाइल में।

जी हाँ दोस्तों, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त मस्त मुस्तफा कारिया अफिनी जिस इस क्लिप में नचा है और इस गाने को गाया है उदित नारायण नेहा कर। चलो दोस्तों, हम आगे ले चलते हैं। देखा जाए तो मूवी रेडी अमृता का मिल्खा सिंह जो गाने को गाया है, और देखा जाए ठीक है, हम आप लोग को सुनाते हैं। सलमान खान खेला है इसमें और ऐसे ऐसे लोग खेला है और कहते हैं 12 दिन 12 घंटे 12 साल में हम दिखाते हैं मोहब्बत क्या है।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं 12 महीने में, एक साल में, 12 दिन में, 12 हफ्ते में आपको मोहब्बत सिखाऊंगा, लेकिन 12 मिनट नहीं रह पाता उसके बिना, यही तो कहा भी मैं, और यही तो है उसका अंत, यही है। प्यार होते होते कुछ टाइम लग जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं तो रह नहीं पाते हैं ना। ठीक है दोस्तों, चलो हम आप लोग के लिए चलते हैं रोमांटिस में। चलो देखते हैं, वीकेंड आ चुका है। सच बोलिए, आप लोग खाने खा रहे हैं, कोई कल वाला खाना खा रहा है, कोई आज पका के खा रहा है, जो भी है आप इस टाइम इस वक्त पे घर पे खा रहा है, या कहूँ बाहर बैठ के पतात खा रहा है, या टेरेस पे ब्रेड खाते हैं। ठीक है दोस्तों, बच के रहना। आज का मौसम कह दिया है कि ब्लक्सम होगा, ऑनवे रहेगा, हाखल भी होगा, बच के रहना, संभल के रहना। और हम चलाते हैं 2026 का ये नॉन स्टॉप डांस नंबर।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप जोर रहे थे बॉलीवुड स्टाइल में, अब हम आप लोग के लिए चलते सुरीनाम स्टाइल में। हॉलैंड देश का जो कलाकार है और सुरीनाम के जो कलाकार है, हम आप लोग के वहाँ पे चलेंगे। बाकी वक्त है, हम चलेंगे वहाँ तक। उसके बाद होगी सवाल और जवाब का, जो फरमाइश लोग मांग किया है, सही जवाब पे हम सही गाने ज़रूर आपके सुनाएंगे। यहाँ से सुरीनाम तक लोग सुनते हैं, जर्मन तक सुनते हैं, और कहाँ से नहीं सुनते हैं। चलो दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं दविंदर सिंह शिवनाथ। देखो क्या कर रहा है यार, हिला के रख दी से। द किंग ऑफ बैठक, दविंदर नाथ शिवनाथ।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दविंदर नाथ शिवनाथ, शिवनाथ से भी आप सुन रहे थे कि इतनी बार मांगा है, पूछा है कि सीटी बजाना छोड़ दे, आज तक कोई सीटी बजाना छोड़ा है, कभी नहीं छूटेगा दविंदर, आप तो है द किंग, लेकिन सिटी तो नहीं छूटेगा यार, लोग तो सदा सिटी बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था खाने के वक्त पे कुछ चटनी गाना हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं मिस्टर ब्लैक, 2026 में न्यू न्यू न्यू

जी हाँ दोस्तों, मिस्टर ब्लैक कहते हैं कि टुकर टुकर देखे दिलवा हमार। ठीक है मिस्टर ब्लैक, क्या गावना, क्या अंदाज में, क्या आवाज में गाया है डांस नंबर है। डांस का दूसरा नाम है चुनमुन चुनमुन। चलो मैं आप लोग के लिए चलते हैं दविंदर सिंह शिवनाथ की तरफ एक बार फिर से।

0: जी हाँ दोस्तों, दिन रात नींद नहीं आई, द किंग बैठक के किंग है दविंदर सिंह शिवनाथ से। अभी आप सो रहे थे, न रैन कटे न चैन कटे। चलो दोस्तों, हम ले चलते हैं एक बार आपको सिलेक्टा बीत की तरफ। आज ये फायदा दखल जाए और वक्त चला गया है बैना, थिंग फोर एन हो चुका है। एक आखिरी गाना चलेगा, उसके बाद हम न्यूज और रिक्लामो चलेंगे, उसके बाद हम यूं गया यूं चले आए, तब हम चलेंगे फरमाइश की तरफ। एक दो गाने के बाद फरमाइश से जो सही जवाब को दिया है उसे हक बनता है एक गाने मांगने के लिए। जो भी गाना हो हम जरूर सुनाएंगे, वादा करके हम वादा निभाना जानते हैं। काफी दूर दूर से लोग सुनते हैं, लेवार्दा में रोती एक्सप्रेस प्रोग्राम को सुनते हैं, बहुत खुश है। अपना तो वो तो सही जवाब को दे चुका है, अभी हम सवाल के जवाब आपको देंगे।
1: Base concept, select the beats, show band, Holland's

0: जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे मिकी और मिस्टर ब्लैक की आवाज और सिलेक्टा बीट का ये म्यूजिक। चलो दोस्तों, मैं जैसे मैंने कहा था, प्रोग्राम को बन चुका है, अब हम चलते ही न्यूज और कुछ रिक्लाम की ओर, उसके बाद हम आपके साथ जरूर रहेंगे।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

जी हाँ दोस्तों, मार कच कछवा बनी है गोल गप्पा। सविता सिंह सलेक्ट अबीत और साधना लीला। ठीक है दोस्तों, जैसे प्रोग्राम जैसे वादा किया था, हम वादा जरूर निभाएंगे। हम चलते हैं प्रोग्राम जैसे मैंने कहा था, सवाल और जवाब अब यहाँ से शुरुआत हो चुका है। मेरा सवाल था, व्हाट इज वार्डर देन एन हाथी एन ओलिफेंट। आप लोगों ने अभी लाइन खुला है भी, आप लोग कर सकते हैं, मुझे आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे भाई अमृत मोहन जो सूरीनाम वेखनर पेपर पोत का दिनाक शहर से प्रोग्राम को सुनते हैं और मुझे ऐप किया है कि देख एक हाथी से हे भी कौन सी बा स्वार्डर देन एन हाथी। भाई दो हाथी, ठीक सही जवाब है। उसने कहा दो हाथी तो और स्वार्दर है। सही जवाब है भाई अमृत। और मांग क्या है किशोर दा के देखा है जिंदगी कुछ इतनी करीब से। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर इसमें काम किया है। और देखा जाए म्यूजिक है रवि के शंकर, शायर लुफानी के लाइरिक से धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर इसमें काम किया है। चलो दोस्तों, ये सही जवाब है भाई अमृत, आपने सही जवाब को दिया है। प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं और मांग किया आपने प्यारे प्यारे प्यारी के लिए जो सूरीनाम में इस वक्त है, अपने काम पे नौकरी है, वो भी प्रोग्राम को सुनते हैं और जानते हैं कि भाई अमृत ये गाना उसके लिए मांग किया है। मिल के सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, देखा है जिंदगी ने कुछ इतना करीब से। भाई अमृत मोहन जो प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है, बोले तुवे ओली फांतन। ठीक तो है वत स्वार्दरदार एन ओली फांत सोबिसो दुई गो ओली फांत और है भी बताओ। सही जवाब था, सही गाने को मांग क्या था अमृत, आपके गाना मैंने कान तक पहुंचा दिया, घर तक पहुंचा दिया, आप तो सुन के खुश हो गई। और मैंने कहा थैंक्स अनिल, हमारा गांव के है वेफनर पे पोत का जूरी नाम का, हम लोग जैसे दो भाई बड़ा हुआ है, बगल में रहते थे मेरा और हम खुश है, हम लोग कॉन्टैक्ट में है और रेडियो को सुनता है, रेडियो फहान को सदा सुनते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं सुरीनाम की तरफ। सुरीनाम से देखा जाए तो गीता काशीराम ने भी सही जवाब को दिया है, कहते हैं दुई गो हाथी। ठीक है, बोले गो हाथी माई और बच्चा, हाथी और हाथी के बच्चा, वो भी सही है, दो हाथी हो चुका ना, जय जो रूप में देखिए दुई हाथी और है भी है धन एक हाथी। और मांग क्या है, देखा एक ख्वाब तो ये सिले हुए। देखा जाए अमिताभ बच्चन राखी और किशोर कुमार लता मंगेशकर का आवाज है दोस्तों। ठीक है, गीता का श्रीराम जो सुरीनाम में बाल को बनाते ही गुलाम गुलाम नबी वैख वैखदाफसी का है और प्रोग्राम को सुनते सदा पसंद भी करते हैं। ठीक है, मफलाओ गीता सिस, ये गाना हम आपके नाम करते हैं।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, मूवी जिलजिला देखा ख्वाब तो ये जिलजिले हुए। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज, म्यूजिक शिवा हरी और दाफीत अख्तार का ये लायरी से। दोस्तों ठीक है, हम चलते हैं आगे, वक्त नहीं है, काफी लोग हैं प्रोग्राम में और देखा जाए। जर्मन से ममता प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद करते हैं और सही जवाब को दिया है, कहते हैं दुई गो ओलीफंत। ठीक है, दो गो है, एगो से ही भी दुई गो हो गए था, दो ओलीफंत दो हाथी। ठीक है, हम ममता भी मांग किया है, किसका चेहरा अब मैं देखूं। जद सिंह का ये सुनहरी आवाज है और क्या गजल है दोस्तों, हम सब मिलकर सुनेंगे। भूल मत जाना हम सब चून है द एवरग्रीन लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो से, हम दिनहाक शहर से प्रोग्राम को करते हैं। और ममता जी, आपका नाम ये गाना आ रहा है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जद्दीद सिंह की आवाज़ में किसका चेहरा अब मैं देखूं, और चला गया था जर्मन की तरफ जहाँ से ममता जी प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है। कहते हैं त्वे ओली फांतन इस स्वर्दर दन एन, या सही बात है दस्तिम्त, तनि जर्मनी बचाई दस्तिम्त, और जर्मन से ही जहाँ पे नॉइस है इसका, जहाँ पे रहती है इसका गांव है नॉइस से प्रोग्राम को सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके घर तक मैंने गाने को पहुंचा दिया है, और क्या अच्छा गाने को मांग किया है जद्दीद सिंह। दुनिया नहीं है लेकिन आवाज़ छोड़ के गया है, हर एक उसकी आवाज़ सुन के धल्ले जीवित है इस दुनिया में, आवाज़ तो छोड़ के गया है, और क्या अंदाज में गया है किसका चेहरा अब मैं देखूं। तो चलते हैं लेवार्ड की तरफ जहाँ से राजन राम शरण भी प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है। देखा जाए यहाँ पे लिखा है त्वे ओली फंतन, या सही जवाब है, सही जवाब है। और मांग क्या है, कुछ प्यार कभी पूरे नहीं होते हैं, अरिजीत सिंह की आवाज़ को मांग क्या है। न्यू सिस्टम में है, नया गाना है, हम सुनाते हैं राजन अपने वार्ता से प्रोग्राम को सुनते, काफ़ी लोग हैं वहाँ पे जहाँ पे ये इस वक्त है, काफ़ी लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। अभी बारी बारह हम सभी के लिए कुछ गाने चुनाएंगे। रोती एक्सप्रेस जो है वहाँ पे, वहाँ से लोग बैठ के प्रोग्राम को सुनते ही, हमारा मामू है, हमारा पापू है, अभी हम उनके लिए भी सही जवाब दिया है। अभी बारी बारह हम सभी के फरमाइशें पूरा करेंगे, तब तक के लिए हम चलते हैं भाई राजन के तरफ।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हो जाते हैं प्यार पूरे नहीं होते हैं। राजन रामशरण जो लेई बार दस प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को भी दिया है और मांग किया था, कुछ प्यार कभी पूरे नहीं होते हैं। ये ऐसी बात है दोस्त, जैसे गाने को गाया है अरिजीत सिंह ने, वैसे बात है। हर घर एक अपना प्यार को नहीं पाया है, बस यही गाना में गाया गया है। ठीक है राजन, प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं और आपका गाना मैंने आप तक पहुंचा दिया। क्या अच्छे गाने को आप यूज किया था। ठीक है दोस्तों, देखा जाए हम चलते हैं बरेदा की तरफ, जहां से बिस्ना दीदी प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है। देखा जाए तो मुझे पढ़ना है इस ऐप को, या कहते हैं त्वे ओली फंतन। ठीक है दोस्तों, और मांग किया है जिंदगी के सफर में किशोर कुमार की आवाज है, आपकी कसम है, मूवी का नाम है आपकी कसम, म्यूजिक है एस डे बर्मन और जो हाथ कलम सिहाई चलाया गया है वो और कोई नहीं है आनंद बख्शी है, नेकतिन वीरन जीवन तक का ये मूवी है और चला जाते हैं काफी दूर है यहाँ से बरेदा की तरफ, जहाँ से बिस्ना दीदी प्रोग्राम को सुनते हैं। तो दीदी लीजिए, हम आपके घर तक पहुँचाते हैं, आप तक इस गाने को हम पहुँचाते हैं, बना करके सजा करके।

जी हाँ दोस्तों, बस आता है एक दिन साल में। सही सही बात तो है, एक बार तो आता है साल में। 365 में सिर्फ एक रोज है जहाँ राखी हम सब बांध सकते हैं, बहन अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। ये मांग था गीता कृष्णा सिंह, जो सही जवाब को दिया है और हर एक भाइयों के लिए इस गाने को मांग किया है। ठीक है दीदी, आप हम सर आपको दीदी कहते हैं, बहन है मेरा, और बहुत खुशी की बात है आप प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, ऐसे ही सुनते रहना। सही जवाब पे सही सवाल पे सही जवाब दिया है और हक बनता है एक गाने मांगने के लिए। काफ़ी लोग हैं दोस्तों प्रोग्राम में, इसलिए हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। हम चलते हैं फोर्स कोटन के तरफ से, जहां पे शांता शार्जू और रेमन को हबीर प्रोग्राम को सुनते हैं। आज मिथिल लालन के मुरन है, कुछ मुरन के गाना हम जाते हैं और सही जवाब को दिया है हक बनते हैं। जो भी गाना मांगते हैं आप मान सकते हैं। हम रख दिया है यहाँ पे मुरन के गाना, जो आजा आजी के आजा राजी मांग किया अपने क्रेन सोन के लिए।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, आज मेरी लालन की फूलन की बहार है, चला गया था देखा जाए फोर्स कोतन से, आजा आजी शांता सार्जु और रेमन कुहाबीर मांग के अपने क्लेन सोन के लिए, देखा जाए तो नीराफ के जो मूरन संस्कार है आज, और इसी खुशी के लिए खुशी पे ये लोग मांग किया है ये मुरन के गाना, और सही जवाब को दिया है देखा या लिखा ले तुई ओगली फंतन। ठीक है, एक से वक्त एक से एगो से ज़्यादा है भी दुई गवा, और यहाँ ठीक है सही जवाब को दिया है। ठीक है दोस्तों, ये चला गया था पुलदैक, वहाँ पे इसका किशन कुहाबीर जिसका लड़के बच्चे का बाप है, और जसवानी जो इसका माँ है। अभी हम ये सभी सही जवाब को दिया है, और अभी हम कुछ गाने चलाएंगे इनके साथ। तब तक के लिए हम चलते हैं, देखा जाए तो हम फिर चलते हैं ब्रीदा की तरफ जहाँ से सोनू भी प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है। बोले दुई गो हाथी, ठीक है जय हाथी जय ओलिफेंट, लेकिन एक से और है भी वाह दुई गो, वही तो है। चलो भाई सोनू, हम गाना आपके आपके पास पठाते हैं, जहाँ तू बैठल बाटे गाना दम हुआ तरक हम पठाए चा, और फाहन द्वारा से हम इस गाने को चलाते हैं। रेडियो फाहन है जो देना शहर से करते हैं। लीजिए आपके नाम सही जवाब पे सही गाना।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे चांद को क्या मालूम चाहता है ओ कुछ चकोर, मुकेश की आवाज़, और चला गया था बरेदा की तरफ जहाँ पे सोनू प्रोग्राम को सुनते हैं। सही जवाब को दिया था और सही गाने को मांग किया है, हम आपके कानों तक पहुँचा दिया है भाई सोनू स्वागरी, आपके घर तक पहुंचा दिया है। और हम अब चलेंगे न्यूज़ और कुछ रिक्लामों की तरफ, उसके बाद हम आएंगे एक घंटे का प्रोग्राम और रहेंगे, और एक घंटे बाद हम ज़रूर अलविदा कहेंगे, आने और जाने के लिए वक्त भी होता है। यहाँ से हम ले चलते हैं न्यूज़ और रिक्लामों की तरफ।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0736523747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl। Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: जी दोस्तों, ये था कुछ न्यूज और कुछ रेखलाम जो भी आप सुन रहे थे। हम प्रोग्राम को ले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो राम सिंह और मीना जो नाना नानी है, जो बच्चे का आज मुंडन है, उसका मुंडन संस्कार पे ये सभी है। नीरव नीराव के जो आज मूरन हो चुका है, काल हो चुका है, मैं भी नाना हूँ उसका, मैं भी अपनी तरफ से एक गाना ज़रूर अभी सुनाऊंगा। और नाना और नानी राम सिंह और मीना खुश के और सही जवाब को दिया है, सही रोज है, आज फ्राइडा है, तो आप जो भी गाना चाहते हैं मांग सकते हैं। सही जवाब पे आपने मूरन के गाना को मांगा है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है नीराव, नीराव के जो मूरन है आज वो सब नाना नानी है और मांग क्या है ये गाने को।

जी हाँ दोस्तों, प्यारी प्यारी नीराफ के जो आज मूलन संस्कार है और नाना नानी ने मांग किया है, खुश होके इस गाने को मांग किया था, सही जवाब को दिया था और सही गाने को मांग किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। तो हम चलते हैं जहां देखा जाए नीराफ के पिता किशन कोहाबीर और जसवानी कोहाबीर, जो खुश होके भी अपने बच्चे का जो आज मूलन संस्कार के उपलक्ष पर भी एक गाने को मांग किया है। और हम दिल और जान से नाम से लतीम फाहून हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से हम इस गाने को आपके नाम करते हैं, किशन और जसवानी। पतोहिया है ना, हम नाना बाटी भी, अब हम भी एक गाना अपन तरफ से आप लोग के सुनाने वाला हूं। तब तक के लिए हम सुनते हैं छोटी मऊआ के लिए

जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, निराफ के मम्मी और डैडी ने अभी इस गाने को मांग किया, मैंने उसके लिए इस गाने को चलाया है जहाँ पे आज बच्चे का मुरन संस्कार हो चुका है। अभी मैं भी आऊँगा बात में, क्योंकि हमें भी नहीं होता है अबे माबे, हम भी नाना बाटी अबे, हम इस रेडियो के बाद हम ज़रूर जाएंगे, कुछ खाना कुछ पीना है, कुछ चुनमुन करना है, डांस का दूसरा नाम है चुनमुन, दिल थाम के बैठी अबे मैं आ रहा हूँ, देखो देखो देखो देखो मैं आ गया, चुनमुन करेंगे, कुछ डांस करेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पियेंगे। ठीक है दोस्तों, तभी ये था फादर एंड मदर किशन एंड जसवानी कोहाबीर, जो खुश होकर अपने बेटे के लिए इस गाने को मांग किया था और सही जवाब को भी दिया था। तो ठीक है दोस्तों, हम हैं नाना और राबिया है नानी, हम नाना नानी के तरफ से भी एक गाना है, कहते देखा जाए मूवी मुसाफिर बहुत पुराना गाना है, नई खदीन सैफ नन फैद तक का है, और कहते हैं मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, किशोर कुमार के आवाज़ है शैलेंद्र का लायरिक से हम ये गाना चलाते हैं। नाम सही लतीम और सभी कोई जो इस वक्त फैमिली में हर एक के नाम से वो छोटे बच्चे के लिए जो आज उसका मुरन संस्कार है नी राफ के लिए।

एक दिन वो माँ से बोला क्यों फूंकती है चूल्हा, एक दिन वो माँ से बोला क्यों फूंकती है चूल्हा, क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला हम

सबसे साथ खींचे बिस्तर के नीचे कुर्सियों के पीछे देखा कोना कोना सबसे साथ खींचे कहाँ गया कैसे गया सबसे परेशान सारा

0: जब सांझ मुस्कराए पश्चिंद रंग उड़ाए मुन्ने को लेके अम्मी दरवाजे पे आ जाए आते होंगे बाबा मुन्ने की मिठाई लाते होंगे बाबा।
1: जी हाँ दोस्तों, ये नाना नानी आजा आजी जितने हैं उन सब के लिए अपने प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे मुन्ना के लिए जिसका आज मुरन संस्कार हुई है और निराफ निराफ की मुझे अच्छा लगती है नी नी नी निराफ कहने के लिए। आप सब जानते हैं निराफ है जो आज काल हो गया है। अभी हम आएंगे देखेंगे कुछ चुनमुन भी करेंगे साथ में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक था हमारा जो बच्चे का मुरन है और मुरन संस्कार के प्लस पे हमने कुछ गाने पेश किया है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं प्रोग्राम में क्योंकि टाइम तो नहीं है, टाइम बड़ा कम है, 3 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ है और हम चलते हैं। देखा जाए तो रॉय मंगली हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम में सही जवाब को दिया है और हमारा कराओके फार्मेसी का एक बहुत ही बढ़िया कलाकार है और वो भी सही जवाब को दिया है और मां क्या है धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार कहते हैं अनुपमा है, अनुपमा मूवी का नाम है और नेकती जैसन सस्तक का है यार धीरे धीरे मचल। हम सुनाते हैं रॉय, आप जहाँ भी है रॉय मंगली हम आप तक इस गाने को पहुँचाते ही, यही तो ही हमारा प्रोग्राम सवाल और जवाब। अगर सही है तो सही गाने को मान सकते हैं।

0: फिर
1: उठो मत, गाओ।
0: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाने।
1: अभी तो बहुत वक्त है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होता। गाओ।
0: मुझे बहुत दुख होता है, तूने मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा।
1: जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए अरुणा। उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक नहीं।
0: मैं बताऊं, ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी?
1: कहां से सीखी?
0: सीखी भी नहीं,

जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे मचल दिले बेकरार, अभी आप सुन रहे थे और ये भी चला गया है भाई रॉय मंगली के, जो इसी शहर से प्रोग्राम को सुनते फोर बे रख के और सही जवाब को दिया है दो ओलिफान दो हाथी, एक हाथी से और हेवी कुंजी है दुई हाथी, सही जवाब है और सही गाने को मांग किया है। दोस्तों घड़ी की तरफ देखा जाए तब आख्त और हाल ऑफ दिल्ली हो चुका है और हम बढ़ते हैं आगे। हम देखा जाए तो हमारा जो अंद्रेई भाई है मिस्टर अंद्रेई, जो हमारा कारो को खरूब का भी एक मेंबर है, काफ़ी अच्छे गाते हैं, वो भी कहते हैं त्वे ओली फन तन, जो सही है भाई अंद्रेई और सही गाने को मांग किया, बहुत बहुत ही पुराना गाने बहुत पुराना गाने को मांग किया है। मूवी है चांदनी रात नेखनती नेखन फिर तक के ये गाना है, म्यूजिक तो नौजात ने बजाया है शकील बदायूनी के हाथ और कलम जो चलाया गया है वो शकील बदायूनी है और सोच नहीं खनती नहीं फिरते के गाना हमारे जो मेस्टर भाई है अंद्रे सदा ऐसे ऐसे गाना मांगते हैं, काफ़ी पुराने गाने मांगते हैं जो शायद हम तो कभी ना सुन रहे हैं, लेकिन आज मौका है इसे सुनने के लिए क्योंकि काफ़ी अच्छे गाना है।

सवेरा। जी हाँ दोस्तों, चांदनी रात 1949 का गाना है भाई नौसाद का, म्यूजिक है शकील बदायूनी का, ये लिखा हुआ गाना है। जी हाँ मिस्टर अंद्रेई, भाई अंद्रेई जो हरदम प्रोग्राम सुनते हैं और हमेशा ऐसे ऐसे गाना मांगते हैं जो अच्छा लगते हैं, काफ़ी पुराने गाने को मांग क्या था नेक नंबर तक का। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अंद्रेई, और ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहना और पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, वक्त नहीं है, काफ़ी कम वक्त बचा है, तो हम सोचते हैं ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम चलेंगे रूदी की तरफ। रूदी गोली जो प्रोग्राम को सुनते हैं और हमेशा कहते हैं अनिल वाह क्या प्रोग्राम है यार, और हम अपने तरफ से एक गाने उनके लिए उसे मैं सुनाने वाला हूँ। कहते अनिल अपन कंधे से वो गाना मखर बजा दे, सही जवाब को दिया है। ये कौन आया, लता मंगेशकर की आवाज़ है, नवजात का म्यूजिक है, और जो हाथ कलम सिहाई चला गया वो चलाया है इस गाने पे, वो शकील बदायूनी है। हम मिलके सुनेंगे भाई गोली, आपके गाना आ रहा है।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, ये कौन आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम के पद्मस और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों। ठीक है भाई गोली जो रुदी गोली जो प्रोग्राम को सुनते हैं हमेशा सुनते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं, कहते हैं मुझसे हरदम भाई अनिल प्रख्त ऐसे लिखे हरदम हमें और हम जान लो दिल से मेन करेगा और हरदम सुनते हैं ऐसे ही सुनते रहना भाई रुदी प्रोग्राम को ऐसे ही सुनते रहना और हमारा साथ देना क्योंकि हम सब चुन है देफ अगेन ला फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे हम सब चुन है। ठीक है दोस्तों, हम काफ़ी वक्त नहीं लेंगे, देखा जाए तो मदन जगेसर प्रोग्राम को सुनते हैं, मदन जगेसर प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है, कहते हैं तुए ओली फंतन और मांग किया है सावन का महीना नेकंतीन सैफ ने सस्ते का है मूवी मिलन और मुकेश और लता का आवाज़ है, आनंद बख्शी का लायरिक्स है और लक्ष्मीकंद का म्यूजिक है, सुनील दत्त न्यूटन इसमें काम किया है। देखा जाए स्टूडियो में हमारा कोलेखा आ चुका है राजन द्वारका, हमारा बात राजन द्वारका का प्रोग्राम रहेगा दोस्तों, कुछ आधे घंटे का प्रोग्राम और है उसके बाद कोलेखा राजन द्वारका आ चुका है।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

जी हाँ दोस्तों, मूवी मिलन 1967 का है और चला गया था। मैं यहाँ ऐप पढ़ रहा हूँ, मदन जगेसर और गीता कृष्णा सिंह एक दूजे के लिए इस गाने को मांग किया था। सही जवाब को दिया था भाई मदन ने, और एक दूजे के लिए इस गाने को मांग किया था। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं सूरीनाम के तरफ, जहाँ से सुनीता बुधाई प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है, कहते हैं दुई गो ओलिफंट। ठीक है सुनीता, दुई गो तो है, जह बच्चा है जह माई है, जह बच्चा है जह बाप है, जह दुई गो बा तो और है भी बताओ। ठीक है, और मांग किया है देखा जाए मूवी दिल एक मंदिर नहीं दिलियन से अस्तक का, और पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज है, लाइरिक्स है हसत जयपुरी, और म्यूजिक सजा करके बजा करके हम लोग तक पहुंचाया है शंकर जय किशन। फिल्म में काम किया है राज कपूर, मीना कुमार, यदेंद्र कुमार और महमूद भाई ने। चलो सुनीता, आप सुरीनाम में है और हम एकदम सुरीनाम तक पहुंचाते हैं। तितली फो कनाल में रहते हैं, जहां पे उसका बेटा भी अमन है और उसका पूरा फैमिली है वहां पे, और पूरा फैमिली वहां से इस प्रोग्राम को सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके नाम।

जी हाँ दोस्तों, यहाँ को ही नहीं तेरी मेरी सिवा पद्मसी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ अभी सुन रहे थे। और ये गीत चला गया था तितली फो कनाल, जो सुनीता बुधाई यहाँ से गया है, उसके जाना पड़ा, उसका बेटा थोड़ा से बीमार है, इसलिए वो सुरीनाम में इस वक्त वहाँ से प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं और सही जवाब को दिया था, मांग किया था यहाँ। अभी आपने सुना पद्मसी मोहम्मद रफ़ी की जो आवाज़ थे और इस गाने को उसने मांग किया था। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो हम सोचते हैं हम एक गाना और चलाएंगे और ये गाना जाएंगे ले वार्ड की तरफ, जहां से आनंद जुगबिन प्रोग्राम को सुनते रोटी एक्सप्रेस। हम मैंने कई बार कहा है, जब भी ले वार्ड जाइए रोटी बिना रोटी खाई मस्त नहीं है, क्योंकि बहुत ही लेकर रोटी है रोटी एक्सप्रेस। आप जाइए ले वार्ड, उससे पूछिए कहाँ पे ही, जरूर लोग आपसे बता देंगे और वो भी सही जवाब को दिया है और मांग क्या है। देखा जाए जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, किशोर कुमार की आवाज़ है दोस्तों। और देखा जाए भीगी पलके है मूवी, राज बब्बर सीता पतली इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आपके सुनाते हैं, ये लेवार्ड की तरफ चला जाते हैं और काफ़ी लोग हैं जिनकी अभी मैं फरमाइश नहीं सुना पाया हूँ, तो मंगलवार को हम जरूर पूरा करेंगे, ये वादा है।

0: जी हाँ दोस्तों, जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत ही गया। किशोर कुमार की आवाज थे, राज बब्बर, सुनीता पटेल। इस फिल्म में काम क्या है, मूवी का नाम है भीगी पलके। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग के यही बताना चाहता हूँ, यहाँ से हम ज़रूर, मेरा हिस्से का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। अब न्यूज़ और कुछ रिक्लामा चलेंगे, उसके बाद हमारा कुलेखा जो है राजन द्वारका यहाँ स्टूडियो में आ चुका है लाइव, वो भी लाइव रहेगा। सुनते रहना उसका प्रोग्राम भी, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम है। आप सब जैसे मेरे प्रोग्राम को सुनते हैं हमेशा, राजन द्वारका मेरा भाई है और हमारा कुलेखा है, उम्र पर है, और उसका प्रोग्राम भी सुनते रहना। ठीक है दोस्तों, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ अगले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते फ्राइडे के मंगलवार से आप सब मुझे ऐप कर सकता है। आप सब जानते मेरा आपका नंबर नहीं है, तो लिखिए और मुझे ऐप कीजिए। मेरा तार का नंबर है 0680833। सवाल ये है, ऑफ वेलकम फ्राक कैन ये नोइट या अंतोर्दन। ऐसा कौन सा सवाल है जो सवाल पे आप कभी हाँ नहीं कह सकते हैं। नहुंगेर ऑफ वेलकम फ्राक कैन ये नोइट या अंतोर्दन। ऐसा कौन सा सवाल है जो आप कभी हाँ नहीं कह सकते हैं। अगर इसका हल आपके पास है या जवाब इसके पास है, तो मुझे ऐप कीजिए। ऐप खुल चुका है, आप लोग ऐप कर सकते हैं। हम देश दाग के हम चलाएंगे फरमाइश जो बाकी है, और फ्राई दाग के हम ये सवाल वाली फरमाइश हम आप लोग तक सुनाएंगे। दोस्तों यहाँ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने के भी वक्त होते ही जाने के भी वक्त होते ही, और हर दिल से ये नाता है, हर दिल से एक रिश्ता बन चुका है। जाने की इजाज़त मुझे ज़रूर दीजिए। हम यही आप लोग से कहते हैं, संभल के बच के हर एक चीज़ को करना, हर एक चीज़ जो करेंगे बच के संभल के 10 बार सोच के चीज आप लोग करेंगे। दोस्तों आप सब चुने फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे, जो देनाक शहर से हम सब इस प्रोग्राम को करते हैं। यहाँ से हम आप लोग जरूर कहेंगे बाय बाय, स्वाई स्वाई, फिर मिलेंगे मंगलवार को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, यहाँ से न्यूज और बयान, खुदा हाफिज।
1: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.

कुदरत का है करिश्मा एक दूसरे से मिलना, दुनिया के सरसमी पर किस्मत को आजमाना। ये प्रेम का जहां है हरगिज न भूल जाना, आपस से है मोहब्बत, आपस से है मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार, आदाब अर्ज़ो। शुक्रवार है अगस्त के 28 तारीख, फ्राइडे 28 अगस्त। देखता हूँ तो एक मिनट बाकी है 3 बजने में। फा हॉन हिस्सा रेडियो पर आप चुन है और यहाँ से आरंभ होता है प्रोग्राम गीतों का संगम, जो परिवार के में दुख दुख में साथ देते हो, जहाँ पर खुशियाँ है बहुत से बधाई पेश हो। अभी भैया अनिल के जरिए आपने प्रोग्राम सुना दोस्तों, भैया अनिल सरजू प्रोग्राम जोर तोर से पेश किया। रास्ते पर है, घर पर जा रहा है,

कल जब 27 तारीख था अगस्त के, तो वही दिन था जब मशहूर गायक श्रीमान मुकेश, माइटी मुकेश का मृत्यु हो गया था दोस्तों। 50 साल हो गया है तो दुनिया में नहीं, लेकिन उसका आवाज भी मशहूर है। लोग हमेशा उसके आवाज से मजा लूट रहे हैं। और मैं सोचता हूँ अभी 5 बजे के बाद, 5 बजे एक जो खास फरमाइश रहेगा राखी रक्षाबंधन के ऊपर पर, और खास फरमाइश के बाद माइटी मुकेश के बारे में कुछ बातचीत होगा। आज का आइटम है कभी, हर एक गीत जो कभी से शुरू होता है 4:30 और 5 के अंदर पेश रहेगा। कुछ देर बाद मैं कोशिश करूंगा श्रीमान रोमियो होस्ट से कॉन्टैक्ट करने को। अगर कॉन्टैक्ट आ गया दोस्तों, उसके जरिए भी न्यूज़ बुलेटिन आप सुनेंगे। मैंने कहा 6 बजे शुरू में प्रस्तुत होगा, उसके बाद मिस्टर जर्नी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनते रहना। वीकेंड है, आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेश हो। देश के सबसे बड़ा बाजार जो है हाक से मार खुला हुआ, अगर आप बाजार पे चल रहे हो या बाजार जाना चाहते हो तो एक दो में जो है सारा संभाल के रखना, इसलिए बाजार पे बहुत से लुटेरे लोग घूमता रहता है।

आज पहली बार दिल की बात की है। दोस्तों, अगर आपको बाहर निकलना है तो ध्यान रखना, बारिश हो रहा है, अपन छतरी या पारापली मत भूलना।

enorm krachtige blikseminslag schudde stad en Ommeland wakker. Dus zo Ommeland ik jaha hek sahara jo Groningen Zuid ke aaspas me hai. To wahan par aardbeving hua hai saath saath ontploffing aur blikseminslag hua hai. आसपास के लोग जो रहता है घर में वो बहुत से लोग अपन घर छोड़ के और बाहर भाग गया है। ये हुआ है स्क्रोनिन के आसपास एक शहर जो है ओमलान जिसका नाम है तुम सा कोई प्यारा गुड्डार फिल्म का नाम है मिस्टर सानू एंड अलकाई याग्निक अनु मलक के म्यूजिक पर और इंदौरी का लिखा हुआ सॉन्ग।

आइटम का शुरुआत मैं करूंगा दोस्तों। इसको घर को देखता हूं तो पूरे सरहेज चार का वक्त है, हलफैफ हो रहा है दोस्तों। और आज का आइटम जो है तुम, तो ही आइटम से मैं गीत का शुरुआत करता हूँ। तुरंत चला जाता हूँ हैंगलो। हैंगलो में रहता श्रीमान चांदर रघुनंदन और चांदर की तरफ से जीवन साथी नैली के लिए बड़े प्यार के साथ ये सॉन्ग माइटी मुकेश के आवाज में।

स्वीट वीकेंड। और जारी है दोस्तों आइटम और आइटम में आपकी बार, तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर के मीठी आवाज में सॉन्ग चलेगा श्रीमान आंद्रे राजकुमार के लिए।

ये गगन के तले, यहाँ से मैं रुरिता श्रीमान आंद्रेय राजकुमार के लिए तुम अगर साथ देने का वादा करो। स्पॉट ब्रेक से, छोटा सा स्पॉट ब्रेक से दोस्तों, अब जानते हैं बीते हुए महीना या दो महीने की बात है, जब वर्ल्ड कंपनी में फुटबॉल का मुकाबला हुआ तो जो फोर्स इधर है फीफा का, श्रीमान ज्ञानी इन्फांतिनो, वो चाहता था एक कॉमर्शियल प्लान बना रहा कि फीफा जो है तो उसका नाम बदल जाएगा, एक दूसरे नाम से फीफा का कारोबार आगे जारी रहेगा। इस बात पर यूएफा का जो ग्रुप है बहुत नाराज़ है, तो ये जोर तोर से अभी बीच से कह दे

एक रेखसाक यानी कि साफ पेश करने के लिए, इसलिए कि वो लोग जाना चाहता है क्यों ये आदमी जो फोर्स की तरह फीफा का क्यों ये प्लान बनाया और किसके साथ ये प्लान बनाया और किसके हुकुम से ये प्लान बनाया, तो देखा जाए क्या होता है आगे। और स्पॉट बरेक्टर निजनाशक क्लिप्स जो है, जो क्लिप्स जो है जो कॉम्पोजिसी फास में रिपब्लिक में भाग लेगा, जैसे कि नाम आसैत और एनएसी। तो आसैत घर पर तेईस दान इफेंडिस से मुकाबला करेगा दिनामो साखरेप स्टोरम ग्रास और हाबे शीफा से, और एट वेस्ट जो है वो है बेनफिका स्पार्टा प्राग सेंडरलैंड आरारात आरनहेम। और आगे चलकर एनएसी जो है तो वो कॉम्पोजिशन सिस्टम में वो खेलेगा बेनफिका ओमोनिया निकोसिया और लेफ की सोफिया के साथ। और स्पॉट बरेक्ट है मैं आपको दूंगा आयक्स अत्वेंत ये भी मुकाबला करेगा, आप जानते हैं जो क्लब्स है कॉम्पिटिशन फास का जो खेल रहे हैं कॉन्फ्रेंस लीग में। तो आयक्स घर पर अटलांटा गेटाफी और एफसी ट्वेंट से खेलेगा, और एफसी ट्वेंट पाफोस कायरात और अलामाती साथ ही साथ एफ सी तुम से मुकाबला करेगा। और स्पॉट बरेक्ट एनएसी दोस्तों एनएसी यूरोपा लीग का नहीं चैम्पियंस लीग का मुकाबला में वो भाग लिया लेकिन प्ले ऑफ में आगे नहीं गया। पहला खेल बोडो से नीलगिरी से हार गया या नीलगिरी से हार गया। दूसरा खेल जो खेला गया तो वो 23वें स्थान था और ये वेस्ट इन दिल्ली से हार गया, तो बोडो ने दिल्ली इन से खेल को जीत गया। तो आगे चलकर अब एन एस ए खेलेगा यूरोपा लीग में, अच्छी बात है पहला बार एन एस ए भी चैंपियंस लीग का मुकाबला में खेल खेला है और अब जाएगी यूरोपा लीग में ये आगे चलकर खेल खेलेगा। कॉन्फ्रेंस लीग का मुकाबला भी हुआ है, ट्वेंथ घर पर 223 नील इन से बाकू से हार गया था, फिर भी ट्वेंथ फिर इन से बाकू को जाकर जीता है और कॉन्फ्रेंस लीग में भाग लेगा। आयक्स कॉन्फ्रेंस लीग में कल के बाद 200 स्विट्जरलैंड का एफ सी सियोन को पहला खेल जो था तो फिर दुए से जीता था वो भी स्विट्जरलैंड में, और कल 23 स्वेस्ट था आमस्टरडाम में फैद दिल्ली से आयक्स ये खेल को जीता है। और आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं जब शुक्रवार रहता है तो एरेडिविजी में फुटबॉल का मुकाबला रहता है, तो आज एफसी ग्रोनिंगेन फोर्टिना सीता से खेलेगा। उसके बाद कल जब शनिवार है तो एक्सेलसियर स्पार्टा रोटरडम आरसेट गोहेट ईगल्स पेक्सवाला एनएसी, और सोमवार रविवार को यूट्रेक्ट पीएसवी फेयनोर्ड आडो डेनहाग विलम टुई एससी हेरेफीन तेलसार आयक्स और आखिरी में एससी कामवीर ट्वेंथ से मुकाबला करेगा। नंबर इन तक नंबर सेस नंबर इन पर है आसत ए द्रीवस्त्रे नीक पिंटन, नंबर टू गोहेट ईगल्स ए द्रीवस्त्रे सीफ पीएसवी ए द्रीवस्त्रे सीफ पिंटन फेयनोर्ड ए द्रीवस्त्रे सीफ पिंटन ऑफ द फील्ड प्लस फेयनोर्ड प्लस पर एससी ग्रोनिंगेन ए द्रीवस्त्रे सेस पिंटन आयक्स है नंबर ट्वी पर ए द्रीवस्त्रे फिर पिंटन। आइटम जारी है दोस्तों, तुम आ गए हो नूर आ गए श्रीमान मुंजीबोध की तरफ से जीवन साथी माला के लिए।

0: शादी करनी है।
1: अनमोल जी बहुत की तरह से जीवन साथी मालक ले तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम का आइटम जारी है जोर दोस्तों।

एक में रहती है आशा और आशा ने मांग की है तुम पास आए आशा स्पेशल फॉर यू तुम पास आए अलका एंड उदित नारायण का सॉन्ग है।

था राखी, रक्षाबंधन का त्यौहार। बहुत से लोग आज भी रक्षाबंधन मनाते हैं और चला जाता है उसी नामदेश, वहाँ पर वहाँ से गायत्री शीला निर्मला और लीला, ये चारों के ओर से अपन दो भाई के लिए यानि भगवान और राजन द्वारका के लिए ये सॉन्ग स्पेशल राखी के उपलक्ष्य पर।

रक्षाबंधन का त्यौहार कल आज भी लोग मनाते हैं, तो खास उपलक्ष्य पर सुनाम देश से गायत्री, शीला, निर्मला और लीला ये चारों बहन के ओर से दो भाई राजन और भगवान द्वारका के लिए स्पेशल ये सॉन्ग पेश था। अब की बार एक कड़ाके का सॉन्ग चलेगा और ये सॉन्ग है दो भाई राजन द्वारका और भगवान द्वारका दोनों की तरफ से प्यारी प्यारी बहना गायत्री, शीला, निर्मला और लीला के लिए।

राखी भागों का त्योहार रक्षाबंधन के खास प्लस पर दो भाई राजन और भगवान द्वारका के तरफ से बहने गायत्री शीला निर्मला और लीला के लिए सॉन्ग पेश था। सभी बहन जैसे कि गायत्री शीला निर्मला और लीला और साथ ही साथ सभी भाई दोनों भाई राजन और भगवान के तरफ से सभी बहना और सभी बहन के तरफ से दो भाई के लिए ये सॉन्ग पेश है।

राखी बंधन है ऐसाख, सही बात है राखी का दिन है तो भाई बहन का प्यार न सिर्फ राखी का दिन हमेशा अमर रहे। शिव नाम देश ने गायत्री, शीला, निर्मला और लीला खास करके दो भाई राजन और भगवान द्वारका के लिए और भगवान राजन के ओर से ये चार बहन यानी कि गायत्री, शीला, निर्मला और लीला के लिए सॉन्ग पेश था। ये प्रोग्राम यहाँ से मैं रोक देता हूँ। दोस्तों एक खास बात ये है कि शिवनामा है ने तो श्राद्ध पे रहती है चंपा द्वारका और चंपा का आज जन्मदिन है और इस जन्म के खास उपलक्ष पर पतिदेव श्रीमान भगवान द्वारका बहुत खुश है और खुश होकर चंपा के लिए गीत पेश करता है। चंपा फहार तक फिर से चुटकी

नाम है नेत्रश्राद्ध के रहने वाली चंपा, श्रीमती चंपा द्वारका का आज जन्मदिन है। इस खास उपलक्ष्य पर जीवन साथी भगवान द्वारका की ओर से बहुत से बधाई पेश किया। छुटकी आपको भी राजन और अनीता की ओर से बहुत से बधाई पेश हो। खास बात यह है दोस्तों, कल जब 29 तारीख है अगस्त के, तो भगवान और चंपा ये दोनों का शादी का 45वां साल है। फैफन फेर तक साल हो जाएगा कि जब ये दोनों का शादी हुआ था। तो परिवार सही परिवार द्वारका, जब मैं द्वारका कहा तो दोनों द्वारका, हाईवे के द्वारका और है नजरसरा के द्वारका, और साथ ही साथ परिवार राम खिलावन और परिवार पाड़ोसियस, ये सभी की ओर से बहुत से बधाई पेश हो। दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम, मैंने कहा था शुरू प्रोग्राम के शुरुआत पे कि माइटी मुकेश, मुकेश जी का कल जब 27 तारीख था अगस्त के, तो 50 साल हुआ पूरे कि उनका मृत्यु हुए। तो उन्हीं के याद में, मुकेश जी के याद में मैं एक दो सॉन्ग चलाऊंगा माइटी मुकेश का, जिनका जन्म हुआ था 22 दिल्ली में, और पिता का नाम था सुवार चंद मठूर, एक इंजीनियर था। माता था चंद्रानी और 10 लड़के था माता पिता को, जिस मुकेश सहदक केंद्र था माता पिता का, और उसका बहन जो था उसका अध्यापक लेरार मिश्र, लेरार जो था वो अनदेख किया, वो मुकेश का आवाज़ सुना घर पर गाना गाते हुए, तो उन्हें कॉन्टैक्ट किया मोतीलाल जो एक एक्टर था, वो भी एक परिवार था मुकेश का। तो ये आदमी मोतीलाल जो है मुकेश को ले गया बॉम्बे, और जो बॉम्बे आया तो वहाँ पर उन्हें अध्यापक, उन्हें शिक्षा मिला जगन्नाथ प्रसाद जो एक गुरु था, तो ये गुरु उन्हें मिश्र का शिक्षा दिया। और पहला सॉन्ग जो मुकेश गाया था वो था मुकेश का पहला सॉन्ग जो था वो तो मैं लिख रखा लिख के बुलाया गया, वो था फिल्म निर्दोष का, जिसमें वो खुद काम किया और दिल भी बुझा हुआ हो, ये था पहला सॉन्ग। लेकिन उसके बाद एक गीत पेश किया नील फिल्म तक में, फिल्म पहली नज़र में, दिल जलता है तो जलने दो, और ये गीत के बाद मुकेश चला आया महफिल में, मैदान में खड़ा हो गया। आज तलक उनका जितना गीत है सब अमर है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

है तो जलने दो। उन दिनों में मुकेश का गुरु था जो, तो वो था साइगल, मशहूर गायक साइगल। मुकेश उन्हें अपन गुरु मांगते थे। तो जब साइगल ने गीत को सुना, तुरंत गया साइगल नौशाद के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद के पास, और उनसे बातचीत किया कि ये आदमी मुकेश जो है ये मेरे आवाज़ में ये गीत को पेश किया, चलो उससे बातचीत करो। तो मुकेश के पास गया और साइगल ने मुकेश से कहा, मुकेश आप अच्छी, आपके अच्छी आवाज़ है, लेकिन कोशिश करना आपन आवाज़ में गीत गाने को। तब तो उन दिनों से मुकेश आपन आवाज़ में शुरुआत किया गीत पेश करने को। एक दूसरा गीत मुकेश के मैं चॉइस करके रखा हूँ, कई बार यू ही देखा हो। आज जब मुकेश जीवित रहे तो 103 बरिस के होता, 103 आरन।

आईटी मुकेश, या फिर हैप्पी स्टेशन 5 हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। पूरे 6 बजे तक मैं स्टूडियो में रहूंगा, उसके बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम चलेगा। दोस्तों, मुकेश शुरुआत किया फिल्म अंदाज, फिल्म अनोखी अदा, फिल्म मेरा और एक दो फिल्में में गीत गाने को, जो था दिलीप कुमार का फिल्म। उन दिनों में राफी साहब जो है राज कपूर के लिए गाते थे और मुकेश दिलीप कुमार के लिए, तो ये दोनों अपने बदलील है। राफी हो गया है दिलीप के लिए और दिलीप हो मुकेश हो गया राज कपूर के लिए। फिर भी एक दूसरा सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ, फिल्म अंदाज निखरी नींद फिर तक में रिलीज हुआ है फिल्म। नौशाद अली का म्यूजिक है माइटी मुकेश के आवाज़ में। कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जा

अगर जीवन भर माइटी मुकेश दोस्तों, जैसे मैंने कहा कल पूरे 50 साल हुआ उनका मृत्यु हुए, और उनका आवाज़ जो है वो हमेशा अमर रहेगा। सभी गीतों में से एक गीत है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपको मालूम है उन दिनों में एक फिल्म पेश किया गया, फिल्म द राइट एंड रॉन्ग, जिसमें मुकेश जी पेश किया ओ मेरे हमराही। ये गीत इंडिया भारत में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, कैरेबियन में ये गीत ज़्यादा पॉपुलर, लेकिन कभी कभी के बाद मैं ये गीत को जरूर पेश करूँगा, सुनते रहना।

फिल्म कभी कभी का टाइटल सॉन्ग कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। दोस्तों माइटी मुकेश, माइटी मुकेश जैसे मैंने कहा फिल्म द राइट इन द रॉन्ग में भी काम किया, उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ और 1300 गीत वो गाया है। याद है सैफ अली के बाद है जो उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हुआ तब से वो कम गाने लगा। और ख़ास बात यह है कि उनका शादी, मुकेश का शादी हुआ है ट्विन टू निकली नहीं सेवन फेयर तक में एक मंडल में, और वो भी कंडी वाली के साथ। पांच लड़के हैं जैसे नितिन, रीता, नालिनी, मोहनी और नम्रता। मुकेश चार रोज रह गया था अमेरिका जाने के, तो वो अपन दैर तस्त त्रौदाख मनाए रहे दोस्तों परिवार के साथ। जी हाँ, परिवार के साथ त्रौदाख मनाए थे। सभी को मालूम है कि मुकेश का मृत्यु अमेरिका देश में हुआ, लेकिन अभी मैं बताऊंगा। पहले गीत हम सुनेंगे और मुकेश ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकन हार्ट गीत पेश किया है और लव सॉन्ग कमती गाया है। आप जानते हैं तलत महमूद के शो था, वो आया था सुनाम देश, तो जो तियात्र साबिरती था वहाँ पर पथफोनिका में, तो वहाँ पर जनता उन्हें फैन क्लब था तलत महमूद का, तो जनता जो फैन क्लब था तलत महमूद का, तो तलत महमूद से एक सवाल किया कि मुकेश के बारे में कि मुकेश कैसा आदमी है, कैसे गाते हैं वगैरह वगैरह। तो तलत महमूद ने कहा मुकेश सरल तरह के गाना गाते हैं। तो जितना लोग था वो लोग गुस्साए गए और सब सोचा कि मुकेश ये आदमी कहा है, तलत ने कहा है कि मुकेश सरल गाना गाए, लेकिन सरल साइलेंस रिस्त गाना गाते हैं। ओकर बदलो वही था, लेकिन वो डीप हिंदी था और हम लोगन न समझे तो बहुत से जनता गुस्साए गया। फिर भी माइटी मुकेश की आवाज़ में ओ मेरे हमर आही

मेरे हमरा ही क्यों तेरा मन घबराए। दोस्तों दुख की बात यह है कि तक डेट्रॉइट मिशिगन में लता के साथ मुकेश गाए कॉन्सर्ट के साथ। तो हाँ, कॉन्सर्ट के उसी रात्रि में मुकेश जी का मृत्यु हो गया और साथ ही साथ नितिन मुकेश भी वहाँ था, उनका बेटा। तो एक कॉन्सर्ट चला आगे, नितिन मुकेश ने पिता के लिए गाया और लता भी अपन गीत पेश किया। ये बात सुनकर राज कपूर बहुत हैरान हो गया, कहा कि मेरा आवाज़ जो है वो चला गया। तो जैसे मैंने वादा किया था, मैंने पेश किया मुकेश जी के 50वां साल जो होता है मृत्यु का, उसी के याद में मैंने लगभग एक घंटे तक के प्रोग्राम रचाया आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। श्रीमान जॉनी आ गया है, जॉनी नंबर वन, अभिजन जॉनी बोले तक गुस्सा आ जाए। जॉनी नंबर वन सामने बैठा, इसे वह हमेशा बगल में बैठते हैं दोस्तों, लेकिन आज सामने बैठा, हमने हम सोचे हमारा सामना करे का आज। कोई बात नहीं, हो सके छोटा भाई कर सकता है। जैसे मैंने कहा, मुकेश ब्रोकरहाट ज़्यादा गाया है, तो एक ब्रोकरहाट सॉन्ग के साथ मैं भी प्रोग्राम समाप्त करूँगा।

दोस्तों 3 बजे से आपका सेवक है आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी को प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। वीकेंड है, आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेशो। मैं सोचता हूँ आने वाला बृहस्पतिवार सुबह धर्म कर्म फाहुन हिंदुस्तान रेडियो का भजन कार्यक्रम लेकर शुरू 25 होने को। वीकेंड है, आप सभी को प्यार भरा वीकेंड, हैप्पी वीकेंड पेशो। खुशबू रहेगा, फूल खिलेगा, जिंदगी रहेगा तो फिर मिलेगा। आप सभी को एक सुहानी रात। भैया जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम सुनते रहना।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी आदाब, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत।

अभी आप लोग हमारा कुलेखा साथी राजन द्वारका से एक मस्त भरी प्रोग्राम को सुना है। उससे पहले अनिल जगरूप का सरजू का अनिल सरजू का प्रोग्राम को आप लोग सुना है। और यहाँ 6 बजे आज है शुक्रवार, और शुक्रवार जो हो चुका है तो हमारा समाचार तो चलती है। और आज भी दोस्तों हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है इस प्रोग्राम को, और यानी कि 1 घंटा आपको हम पूरा दुनिया को शेयर कराएंगे।

अपनी सूरीनाम की ओर। समाचार आप लोग को हम सुनाएंगे सूरीनाम के एडवोकेट के बारे में, हम आप लोग को बताएंगे कि क्या हुआ। तो आप लोग ये नाम तो सुना होगा, अब है अनफुका डेरेक फेरा के बारे में। बहुत क्रिटिक करी से भैया एरनस्ट के क्रिटिक जो अंडरसुक भैले को मेसांदलिंग भैला ओकर क्लियंट के सिपाही ओके मेसांदल कर रहा पुलिस शिविरो कैसे स्ट्रांथ में पुलिसी ब्यूरो कैसे स्ट्रांड में और काबुल अरफोका डेरेक फेरा के का एगो क्लियन किसी पाहिलोन हुआ पे का बोले हैं बड़ी मिसांदल कर ले रहा। तो एक बारे में राजमान बोले हैं, बोले एक बारे में मांगेला ऑन अ फांकलक हेट फ्रॉम द अंदर सुख ऑन द डेट वर्ड आउटगोर्ड द पुलिसी मेड अ वर्कर van hetzelfde bureau waar de mishandeling zou hebben plaatsgevonden. De mange ekker bare me hoe mooi ze onderzoeker waar we kiezen bij hier ook er cliënt ke en die politiebureau jo hai politiebureau ego hai en wo hi pir politiebureau me ook is van sahar ke politiebureau me और जाए के मिसहैंडल करी से ओकर बारे में मांगे जाने अनफोकात फेरा बोले हैं और भी बोले हैं नानी बोले हैं फोराल जो फेड भेल ऑन द सुख के बारे में बोले सेल्फ द खाली वही पुलिसी बिरोवा के बातचीत हुए हैं ओकर राजमान डूम दैट द एरेस्ट का ऑनट्विकलिंग ए फ्रीज दैट हियर दूर वार है इज फिंडिंग एन इन है ड्रंकोम। तो एक बार में ओपी से जो नहींगा ऑन द सुख पेंसिल साकस कोतु के बारे में बोले सौ मुदन एट फोरन की कैसे चीजों के बारे में हैगा दार दो सौ फोकस हेम द खमीन द एसरन पेप mogelijk getuigen en een onderzoek zelf zich nog allemaal bevinden bij de bureau waar de mishandeling zou hebben plaatsgenomen. तो एक बारे में आप लोग को और ये जानकारी होगा तो हम बताएंगे कि कैसे चीजवा है कैसे ना है। तो हमारा प्रोग्राम में आकर जुट गया है हर हफ्ता की तरह और वो है धर्मेंद्र इसरी सत्यराज अर्चना देवी का हर नाम भी आ गया है। तो आप लोग को हम स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में भाग लेने को जुड़ गए हैं। तो देखो बातचीत हो रहा तुलन जानो है चांद संतोखी फे यहाँ पे के अब तो दुनिया में ना है दोस्तों और फोर सीटर रहा। तो फोर सीटर के बारे में अब सब कोई मांगे हैं के फोर सीटर फे यहाँ पे के हुई के फोर सीटर ना हुई। तो जोगी बोले रहा बोले गया दिन के द्राफ लाख ना है उधर कृष्णा प्रसाद मथुरा भी मांगे हैं इधर आशीष कुमार गया दिन भी मांगे हैगा फोर सीटर हुए बाकी सब बोले जे जेके स्टेम करेगा जेके मेरदर हेत रहेगा वही फोर सीटर हो ही पाएगा यानी कि फिर यहाँ पे के। तो यहाँ पर लिखा लेगा गया दिन इज देयर तीन होंड स्टेमन वार्थ कान हीन फोर सीटर फान फे हैप्पी वर्धन यहाँ लिखल गए उसका खाली 1300 अने आदमी ओके स्टैम कर से बोले फोर सीटर ना हो पाई। एक बारे में बोले है गा द अनालिस फान इलेक्ट्रोलाल बास फान आशीष कुमार गयादीन जोगी बोले इस हफ्ता में बोले बेनंद फे हैप्पी बोले लांगर इन द वंदल खांगन सर्क्यूलर दैट फ्रैक्सी लेदर onder voorzitter Assis Kumar Gayer niet over de voldoende maatschappelijke draagvlak beschikt om de partij te leiden. Jogi adviseerde ki bole voorzitter squak ego minister raha oud minister Ganesh Kumar Kanhai bole als een geschikte alternatief bole Gayadin vinden de bevoegde partijstructuren uiteindelijk bepalen wie de volgende totaal is. To is samay pe to waarnemen voorzitter to tulun jano hai wo to hai है। तो साथ ही साथ इसमें बताएंगे हैं ट्वे स्वतंत्र फ्लाक चाहिए हमारे है कि किस प्रसोनन के करण बस्तुरन के और कांग्रेस अफगफार्दक द एन एन ऑब्स्टेल सोमफाने यारे लांग अंदर हंडल अंदर लेंगे इन होडिंग और बोले साइफर्स जोन बोले सेंट्रल हो विरो के बतावे 2015 में वानिका में
Bolle lijst V7 vergaya din raham. Bolle op de derde plaats van de lijst en kreeg 749 stemmen. O bolle hesanto ki paila hua 17,983. Raymond Sapun paila hua 5,845. Gamatura paila 2,815. Mohammed. En Mohab Ali 2300 Spira, Daniela Winby Pira, Abolehe, Gayadin Bole, Kamti Pira, 749 stemmen. Wanneer kwam je? Toen ik er baren mee, bhaiya, je voorzitterschap, je chunau hui, ke jiti, ke na jiti ga, to aap log ko hum jarur batayenge ki kaise baat hai. भैया देसी सूरीनाम में सब कोई बोले हैगा इज द ब्यूरोकर फादर ऑफ नहीं औरत है तो ब्यूरोकर मदर हो जा है देसी जैसे यहाँ पे हम लोग के हैगा का बोले हैगा दनहाक में और दूसरे शहर में ब्यूरोकर मिस्टर ऐसे हम लोग सूरीनाम में बोले ला डिस्क्रिक कॉमिजारस सूरीनाम में बोले है तो एगो देसी है इसका नाम बा म्यूलर देसी म्यूलर भैया यहाँ लिखल अपन औरत के बड़ा जबर मिसांदल करी से और जो तू देसी बाटे भैया बेरखर फादर बाटे ना मुझे खुयफोर मिल जाइन मैं तू अपन औरत के मिसांदल कर ले है और सिपाही जाए के एर्नेस्टो म्यूलर के जो वानिका साइट के हैगा देसी और जाए के सिपाही में नालिश करी से और बोले है ओकर पीठी बहुत पीरा है बोले ओकर आदमी म्यूलर ओके मिसांदल करी से तो बोले द फ्रॉ खाफ आन की बोलेगा नौ बरिस से मुकर संग रहिला और बोले छह हफ्ता हो गए है गांव बोले हम लोग में नम हो जाए स्लीप द क्वेस्टी है और बोले अब अरमिया हमें मारी से पुलिस नाम ना द आन लेने फार फर क्लान आन खिफ्त ऑफ द साख में सांदलिंग द देसी वॉज ऑफ दैट मोमेंट नीट ऑफ इट एड्रेस अनवीस लातर मिल्डर जाए कि सिपाही अप्रे मेल्द करी से और एक बारे में रहा अब अपडेट आयल है कि म्यूलर बोले है वो पेर फरक्लारिंग पे बोले हम अपन औरत के नाम मर ली बाटी ओंद केन करेगा कि अपन अखन उदक में सांदल कर ली बाटी बोले एंड दैट द बस्कुल के फन में सांदल ऑन योर इज द फ्राक इज दैन वारम से इन फ्रॉ द पुलिस ही इन कसकाकल दी हर हाउस एड्रेस ही आनखदान एंड फरक्लारिंग ही फनोमन तो एकर बारे में सच्चाई की केवल अब तो लोन जानो भैया बोले जेकर आनू लांगा हो के सिपाही थोड़े पकड़ के ले जाए भैया और हम तो रहते थे अपने पकड़ के सिपाही बन कर एकर बारे में का बोले हैगा स्कोतुल घर घर हुआ जाए पूछे गो इंस्पेक्टर है कि कैसे तुलन के संगे हिया के सिपाही रहे हैं तो कपेंदा दौर पे कि कहाँ पे जो सिपाही गईल है तो हुआ एक औरत से पूछे है औरतिया से बोले हिया पे हम लोग कैसे सिपाही हमारा काम करे तो औरतिया बोले है गाम बोले जब तो के सिपाही के काम लगे है तो सिपाही बोले मीनो आबी फरफूर हाँ बोले मीनो आबी फरफूर बोले हमें फरफूर ना है आवे के तो के बचावे के तो जब फरफूर है तो बोले वागी नो दे इनसे ही तो बोले ना आवे इसको उतूर सफा बांध औरतें इंटरव्यू में बोले बकी बोले अब्बे तू बैल करके बोल ले लेके हमारा दमिया हमें मिसांदल करे मारे है तो बोले जैसे फ्लिक टैक ओ तो आए के खड़ा हो जा तो वही में किसी पहिया के गो दमिया बोले है बोले जब हम लोग आए ला तब मल्ले तो के बस कैरम करे कह बोले ना बोले तू बस कैरम करे खात ना वे बोले अरमिया के पकड़ के बन करे हैं और औरतिया के संगे मांगे जाए हाँ सूते नानी ऐसे बोले करे भैया सिपाही के मुड़ी नीचे कर दे इंस्पेक्टर लून बोले ना हम लोग के आवे बचावे रमिया पाड़ के बंद करी जो फ्राई स्पेल है कि औरतिया के संगे रिलाची मांगे कर इसको उठन बोले ओहिक मारे आवे है मजे चोर चोहारी आवे दूसरा चीज के बारे में सिपाही के बैल करिए तो बोले उसे के कभी फरफूर ना है तो कुमार शामी भी आ गया है राकेश इतरेक से लगनम से हमारा
हमारा दोस्त हमारा वीर यंग और वो है रॉय काली भी आ गया है। आप दोनों को हम स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में जो आप लोग जुड़ गए हैं और भाग ले रहे हैं। दोस्तों हम जाते हैं रॉय सूरीनाम में भैया असाइड ओ तो पैसा फरफाल हुए भैया पैसा भी फरफाल करे एक मिला के पकड़ी से भैया पैसा फरफाल करे हैं। ओकर बारे में अब हम बतावे कि कई के करे है और कैसे फरफाल करे है ना डायरेक्ट बता दे भैया एगो इन फेर तक यार के आदमी सूरीनाम में पकड़ान है तो ये अब तुरंत पैसा के वहाँ हाथ में आवे पैसा तो तरी घुमाए उमाए के देख लिए भैया न पैसा न होए व न पैसा सूरीनाम में चलल है बड़ा जोर। और एक बारे में एगो लुंडा के एगो आदमी के इन फेर तक यार के सबन पकड़ी से और बतावे ओकर नाम है ओरफी यो री मानो बेंत ते भैया निकट फिरन तक तक खबर है एकर अंदरे से का ड्राम ब्रांडर्स क्रॉक शहर के परमारिबो के लौंडा है। तो ई लौंडा भैया ई आदमी बोलने लौंडा ना इन फिर तक यार दमे ये मन ये बन के यंग फैन तो ई भैया जाई के और ये भैया पैसा फ्रौदेर करता बनावत रहा और फल सूरीनाम से बोली मानना दृकलिक और फ्लुख्त खफालक आन मेरे और ये भाग्य भैया हाँ भाग्य है न बंग मिली आता मैं किसी पाही खोजे है और बोले न सोमार भर बोले खफालक भी है गा फल कौन से फरते सीनियर मैन थे ब्रेन है इसके स्वार्थ क्रूसार एन मॉल का पोस्टियर है गा बोले प्रसिद्ध ओम खान फनसा खूफी फरफाल से बिलियतन मुखले किन ओम लेप से हम प्राक इस वेल के अन गेल्ड है गान वर्ड इन द ऑब्सपोरिंग ब्रेक नीट फॉर्मेल्ड ऑब्सपोरिंग बताए बाकी ये पैसा फरफाल करत रहना नहीं तो आप लोग जो पैसा ऐसा हाथ मिली हो तो एक बारे में घुमाए माए के देख लियो तो लून जानो सर मक्का में बेनलांद में कितना मछरी मरल है नानी बड़का बड़का मछरी मरल एक बारे में दयाना में सब बोले एक भाव पूछे कि कहे ना एक बारे में ओंद सुख करके बतावे कि मछरियन कैसे मरल है मछरी एकदम 18 किलोमीटर ग्रासाल को और आगे चल गए भैया मुरु क्रीकीज में मछरी मरल है सरमक्का कंती चल गए मछरी मरल है और लांटी बोले मछरी ना खइयो वन ओमा फर खिफ थे वो पानी में और वो मछरी जो जिंदा रहा ओके पकड़ के सब हम फ्रंकराइट पठाई से तो हुआ पे ओंद सुख भैल मछरिया में तो ओकर देही में क्विक पाई से भैया खीमिस चीज पाई से जो सबन सोना निकारे है उस सब दवाइयन मिलल है उस सब के देही में तो बोले है अब प्रेसिडेंट जो हम लोग के है जेनिफर सिमोंस वो गैल है अब बतावे है गा बोले कि ये चीज हुआ ग्रासाल को करे से ग्रासाल को श्री नाम में को बदराइफ भैया और बोले ओकर का बोले उस सब फ्रांतवोरलक है इस खिफ्तवा के बारे में जो इतना मछरी मरल है तो तुम जानो रोनी ब्रंसवेग तो भी जंगल के आदमी भैया उस जंगल के सब काम जाने कितना सोना होकर खुदा ऐसा हिल है इरफान ने मैम बस उजाए के पहुंच गए भैया अपन फिल्म मेलम ले के ग्रासालको में तो ग्रासालको में तो गैल है मैं अब आए के देना में बोले हैं बोले जब ई सब चीज तुम बकैन कलर बोले हम परसों लग गए बटी ग्रासालको में और बोले हुआ जब देखी ला तो ग्रासालको के जोन पनिया जा है बोले ऊपरिया के अगुआ कई गो तो बोले उमा तो मछरी खेले है बोले उमा एक को मछरी ना मरल है और बोले मछरी जाए के 18 किलोमीटर दूर ग्रासाल को उसे बोले मरल है तब ग्रासाल को लगे से खिफ्तवा थोड़ो जाएगा बोले तो लोग किस ना है बोले नहीं जो नक्चे वाला मछरी है वो ना मरत तब बोले देखा मैं फिल्म पे बोले मछरी तब जिंदा आएगा जो ग्रासाल को के तुम बतावे कि उकल लगे भैल है तो एक बारे में बतावे देना फोर्सेतर बोले हैगा जो मछरियन हुआ जिंदा है अनवीक्षक से इनट वात रोम दोम दी से कौन से सी बोले दारनाथ से पुतन दी लोसिंग फंड कौन तीमी
geleerd. Waren naar de Murukriki belemmerd. Het water zou volgens hem eerst in die putten terecht moeten komen. Alvorens, Jona Bemboli hega. Tabole Kaise Machiri Huma Marseke hega. Abo Bole hega. Bole hem bebiswaas karen. Nationale Milieuautoriteiten. Bole specialist na hei. Maar bole Jona hem de klibati. Bole hem ohi bataila. Bole hij zelf heeft ter plekke video gemaakt. Van hoe vissen daar rondzwemmen en worden gevangen. Deze dode vissen zijn pas na 18 kilometer te vinden. Toen ik er baan in bole, ठीक है, बोले जोन मछरियन हुआ है, बोले कर मतलब ना कि सब मर गए हैं, बोले बकियो के नमक काय कम दर क्विक है उपनिया में, बोले वही सब मछरियन से बन लेके उन सुक करवाई से, दिस इज फेक दैट ए लिविंग फिश दैट हैव विल Niet zeggen dat er daar niets aan de hand is. De vis kan leven zijn. Maar heeft kwik in allerlei dingen. Toen hebben we die mecherien ke baare mein hem bata dee. Hemara Hindustani bara jabar ja katia tia lagawe na na. Aur je katia tia je ye lagawe na rakees. Te tuke chahi jane kahan ke mecheri hem khaai hai. Aur kahan ke mecheri hem na khaai hai. Want loon jano farkhi baur khafar chij hai hemare mausi. तो अब देखो हम जाइला भैया ही बांचित हो रहा है एगो होटल के हाँ सुरामी देश के बांध थे कलकत्ता स्ट्रांच में एगो होटल है तो होटल के जो आदमी है गए ले कमरा में देखे तो कमरा में एगो औरत मरल परल है भाई होटल में और वो सिपाही गल देखे देखे ओकर देही में खुरचान है ब्लाउ प्लेक है ब्लाउ प्लेक है तब जब चोट है देही में तो तिरक जनाएगा कि मैं सांदल भैले मरल है तो कोई मारी से तो स्काफ ऑन अन द बीनर फॉर द फ्रॉ वार कोन वुमन एगो आर्स ऑफिशियल बताए इसकी उम्र गए है बोले फरमुडलक ओवरलीडन अन एन अक्यूट हार्ट इनफॉल तो भैया जो हार्ट अनफॉल समझे तो दहिया में कैसे तो खुरचर फुट चले भाई हाँ तो राकेश बोले बेतरे मछरिया मेरा खाइए भैया और बाजार के मछली भी हिसाब से किनियो हाँ किनियो हुआ के मछली पकड़ियो जहाँ पे क्विक क्विक ना है भैया नहीं तो जाने बहुत खराब का बीमारी है यहाँ तो यहाँ बातचीत हो रही औरत के बारे में तो ये औरत बेचारी मर गए तो कर देही में कैसे ब्लाउ है और दतरा बोले ओकर हार्ट स्टिल स्टोन भैल है मसीपाही एक बारे में उन्हें सुख करे हमारे यारो जैसे जैसे इसके बारे में पता चलेगा हम आप लोग को जरूर जरूर बताएंगे तुलन जानो भैया लोन काना वाई उजन बोटिया हबड़ा हुए है निकेरी से जाए के और यानी कि गायाना हाँ बोटिया भैया बीते हुए हफ्ता में हम लोग के बताए रही हम कि बोटिया बोले कंट्रोलर आयल हाँ और जो फोर्ट से तो ना बोले सब मोई तो कंट्रोलर बा हमार ब्रांड खफार के चीज जितना मोई है मैं बोले बेका गचुआ ना दे रहा हम सोची बोटिया दो रो हम अपन चलाए सकेला रमियन हबड़ा कर सकेला मैं ब्लैक बेल भैया जब आयल हैगा इंस्पेक्टर नस को तू के जो ने जो ने क्योर करे वाला क्योर में इस तरह बोले ना बोटिया तो के ना माँ के चलावे के तो जब बोट ना चलावे भैया तब तो भगदर मचल आदमी अब स्ट्रांत हो गए हियाँ से हुआ तो जो छुटका बोटियन पे सब हबड़ा करे बैक रैक ऊपर दुरुकते हुई गए भैया लेकिन अब वो तो गाड़ी तो अब ना हबड़ा हो सके तो छोटा बोट पे तो एक बारे में काना वायमा मैनेजमेंट कंपनी एनफी जोन बा बोले ही फिर फरवार फरवार फॉर द एनफी काना वायमा अप कही फन ना टेक्निकल इंस्पेक्शन एन आन फिलिंग द एन डिक्ट Metingen aan de bodemplaten van een vaartuig is de situatie opnieuw beoordeeld. Kie ook er botia ke bodem moa check kari se gaan. A bole kum mooi se samande kise. De controle en de technische werkzaamheden zijn uitgevoerd. In samenwerken met deskundigen in de Surinaamse dry dock en shipbuilding. Met aan basis van de resultaat is besloten het vaartbord op te heffen. Dat hele mooi hoge de botia ab chal sake hee. De Kanawaya very cheerful herfat और 28 अगस्त से बोटिया फिन हबड़ा हुए लगल है मार वार और मुद्दी दिंगे इसको स्टॉप कर दे एगो बद्रेव जो चले है तो अब बे ओके तू ना रोक पहले तू अंदर सुखवा कल ले जा तू देव ने तीव बांटे तब तो के चंगे अफक्यूर करे के मार डे बद्रेव मु दौर लो पन तेंजे कि एकदम हेवी स्वार
यानी कि ऋषि को ना है तप। तो शारदा शांति शारदा आ गया है, तो आपको हम स्वागत करते हैं शांति शारदा को अपना प्रोग्राम के बातचीत है। तो और भैया हम जाए तरी चिनुआ के ओर। हाँ, यानी कि हमारे देश में चिनुआ इतना ढेर हुई कि भैया के में कभी कभी शीना के भी न्यूज पढ़े के पड़ जा है। हमारे कहना सूरीनाम के लोग हैं, चिनुआ तो हुआ देश चलावे भैया, दुकानदार जितना है हैंडल से बदराइफ है, हुआ चिनुआ है और हिंदुस्तानी मिल के खरूत बदराइफ दराई करे है, दत इस खरूत से इन्फेस्टियर दिस इन सूरीनाम। तो यहाँ बतावे हैगा मिली तैर सुर जाति के बांध हुए हैं चिनुआ देश में दुई गो जबड़ जबड़ भैया होख कपड़ा से मिलीतर सैन ऑन स्लाख में से फंसन फिंसी फन सेंट्रल मिलीतर कमीसी और एगो का नाम बा संग योकिया एगो का नाम बा जेएमजी। तो ये दोनों के ऑन स्लाख कर दिया है बिन दस्ताज और खान के बारे में। तो और जैसे रहेगा हम बताएंगे अभी भैया बातचीत कैसे तुरंत जानो है। बीते हुए हफ्ता में हम बताए ही कि कायाना से दुई ट्रक पकड़ी से सबन हिया कहाँ बोले हैगा कोरोनी के जहाँ कंट्रोल हुए हैं। अब हम बता पोकर बारे में कैसे तरी नींदा लान के न्यूज हम बताए दी। तो सात आ गया है तो ये तो मेरे ख्याल से शारदा है। हाँ, जब नाम बदल देते हैं दोस्तों तरीक खोजना पड़ता, अच्छा कोई बात नहीं है। तो यहाँ बताए गए ये यत के ऊपर हम जाए भैया, हम लोग का जो प्रीमियर है सीरीना नीदरलैंड के, हम लोग का प्रीमियर जो है वो है रोप यत। तो यो प्रयत भैया प्रेस कॉन्फ्रेंसी पे यहाँ का बताई से ओपोसीसी प्रत्ययन ओंदर हंडल करी से सोमवार के जो हम लोग के यहाँ ऊफ डब खरूथिंग के बारे में हैगा बोले हैगा रोपियत प्रेस कॉन्फ्रेंसी में बोले हैगा वह बनु हील खुद बोले जितना चीज हमने तफरा पे धर देली बाटी और तू जाने मेरदर है इतना है दिस दिस रोपियत से मान ऑन से प्रीमियर एंड क्वालिटी रिमूव आउट एंड नाम लुक स्टेन सुक बेड ओपोसीसी और बोले हैगा हरदम हरदम ना पावे अंडरस्टैंडिंग ओपोसीसी पढ़ते हैं सीट लंग्स कोमन एंड अलेन बेन क्वालिटी गस्प्रेकन वार्डन खफूर अंतवर्द यतन बफेस्तख्त। तो ये बांतित है यत के बारे में हमारे जनता। नेपाल के ओर हम जाएला, नेपाल में भैया बहुत जबर हुआ पे यानी कि पानी के वाटर मसा जो है पहाड़ पर से आयल है बड़े बड़े बिल्डिंग घर द्वार सब इन बहा लिए है। एक बारे में आप लोग जानो है यहाँ पे बोले 1400 गो अबे फर मिस्ट है बहुत बड़का रंप भैले भैया कंप्लीट रफाश इन द रंप खबीत इन नेपाल के बारे में है। बहुत आदमी हुआ पे मर गए भैया बतावे करे हैं मौसी बोले हैं अंदाख नांद फर वुस्त इन द वातर मासा देलन फर नेपाल बोले हाथ वेख खस्पूल वेश पीकल इन द ऑफिशियल सेफर नोग नी द उम्फांग फर द रंप वन शीना स्टतुलित से जाए के देखी सेगा मैं ड्रोन की काम भैले को बड़का ब्लॉक ऐस गिरल है अपनिया रुकल्ला अचित्ते में चाटा पाटा ईटा लेके पूरा नेपाल के गांव सब भा ले गए हैं जहां पे इतना आदमी मरल है भैया दार कोमन इंदौर शीना बसेत तिबित नो 558 तक मेंशन बेई यहां बताए गए हैगा 207 तक आदमी नेपाल में मर गए भाई मां नीमा देंग दत खुद वेर खाफ इज फ्रॉम दैट वर्कलक अंतल वन तू ना जान पाइए कई गो है। तो उस्ताद के उस्ताद महा उस्ताद सुंदर हीरा भी आ गए आपको हम स्वागत करते हैं उस्तादो। तो यहां बताए गए उस्ताद नेपाल में इतना हमारा हिंदू भाइयों लोन हुआ के जनता मरल है ओक हीर खान निवान इरफान ऐदा द सेफर्स ओफर इन कोमन 507 इन नेपाल 216 इन तिबित खबित के और वहां पे लोग धसान में सब पानी में और मर गए भैया को फ्लूथ हॉल्फ आइल है तिस फेल मुई लेकर ओम बेल तक रही कि कैसे है और कैसे ना है। तो
je, want onder de buitenlanders die worden vermist is een groep van 133 uit buurland India. India kan 133 almi bi Nepal me gel ha, matlab ki 133 almi bi kabule las hui ge hain. Aur India badka badka plane me 14 pani sab aside India en Nepal me ondersteun kare khat pathave hain. Darnas Khan en matlab ki 133 India ke admi maral hai di open pilgrims toch was naar een heilige berg in Tibet. Dus heb ik een pelgrim, een yatra karatra hoop, ja. De otra admi bhaige hai, laso ye hai. Malaysia ke admi bhi hua raha. Khad bhai for bhai 55 ko Malaysia raha. 47 ko Amerikana raha. 34 ko Australiës raha. 33 ko Britain raha. Met wie sinds de raam geen contact meer is, mensen. Nepal men onder de vermisten, ki man duigo Nederlander bhi raha. Duigo Nederlandse minister van Buitenlandse heeft meerdere verontrustingstelefoontjes binnengekregen van achterblijvers en houdt daarom rekening met enkele Nederlandse vermisten. Het is volgens een woordvoerder nog te vroeg om een volledig beeld te geven, mensen. Toen behoedde maand hij 5000 surjati en jaike en wahan par jaike sabke khoje hain. यहां पे और मानचित हो जाए 10000 को है सौदन द फेस इन getroffen ओब बतावे हैगा रोड क्राइस भी स्टेन करिसेगा de overlevende het gebied ingebracht, voedsel, water, tenten en medicijnen. En mensen, als we hier zijn, kunnen we alleen voor die mensen bidden dat het namelijk snel voorbij gaat. Dus al deze problemen zijn in Nepal. Beste en beste luisteraars, bahut bahut dukke baat hai ki hamara Nepal mein itna badka dukh paral hai. हम जाते हैं भैया रुसलान के ओर. रुसलान के बातचीत कैसे हैं? रुसलान के बातचीत है सीआईए बास एगो हैगा और वो हैगा अमेरिका के वो उड़ के गए भैया क्रेमलिन और वहां वास्क्यू करी सेगा गेवेल्ड गब्रुकन टेगन नाफो बोंड गनोटन कि जो नाफो लैंड में अंडरस्टैंडिंग है सीआईए बास गेल है और रुसलान के मॉस्को में बोली से वास्क्यू करी सेगा कि नाफो के ना छुयो जा. Manger ke baat hai, Russische functionaris heeft gezegd dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet accepteerd gaat worden. Bovendien vroeg hij Rusland om de steun aan Iran te verminderen. Of boli se jo tu steun kare Iran ke jo lade hai bole oh tu verminder kar aur bole NAFO land ke na chuye tu jaane hum bina NAFO ke bhi ya aur NAFO ke je ek ok chuye to sab mil ke to ke dagi ga bole hai ga an dri in geweiden een Moskou aan boord van een militaire transportvliegtuig was geheim, maar werd door Amerikaanse media toch onthuld. President Donald Trump bevestigde het woensdag, maar een reis als een semi-routemachtig bezoek. Toen je baantjeet horen, bhaiya. Rusland ke waarschuw karie se, en onder meer Polen ke en Litouwen pe hua pe Rusland ke plane alleen tari jana ode bhaiya hebben de afgelopen maand gewaarschuwd voor Russische provocatie van het land aan de rand van het NAVO grondgebied, met name de Baltische straten. Rusland breidt mogelijk zogeheten valse vlag aanvallen voor, is de vrees die het land op Oekraïne wil kunnen afschuiven om de steun van het buurland te ondermijnen. Dus hoe we net NAVO grens op John Kamel Polen en Litouwen gebied mee heen en dus कोई के उक्रेना का फ्लाग से उड़ा हुए हैं सो दैट कि अब एगो बॉम्ब से बनाफो में गिरा देगा तो उन नाम लगेगा इन प्लांट्स फॉर रुसलान नाम लगेगा उक्रेना के तो एक अरमाने में से आई और गाइल है वास्क्यू करी से बोले हम लोग के नाफो लंद के ना छुइयो भैया मन नाफो इज हिल स्टेरक मींस दैट सिट अमेरिका ओ एर भाई मन जे नाफो के छुइए दा इज नीदरलैंड फ्रांकफर्ट तुलन जाने नाफो में कितना देश है भैया नाफो लंद हैव एन एन है
नाफोलंद में पड़का पड़का वापन है और सब मिल के जे तो के दागीगा तब तू ना बच पाइए त्वेयन देर तक लंद है नाफो में। हमारी जनता त्वेयन देर तक देश जो अन खसलोता हैगा नाफो में जे के पता ना हो हम जल्दी जल्दी नमुआ बता दे के है नाफो में। अल्बानिया है, बेल्किया है, बुल्गारिया है, कनाडा, डेनमार्क, डॉयसलैंड, एस्टलैंड, फिनलैंड, फ्रांकलैंड, ग्रीकलैंड, हंगारिया, आइसलैंड, इटालिया, क्रोएशिया, लेटलैंड, लिटोवन, लुक्सेमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वेगन, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमेनिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया,

John mangi inaan voor landen ke aanval kreeg, dan gaan ze dit allemaal krijgen. Bij jam jij Suriname ke oor, pino ha. Rusland ke bataan chukli, Chinua ke bataan chukli, Nepal ke bataan chukli, aur Oekraïne ke bataan chukli, hum jai ap tari phin se apna matrabhumi jahan pe hamara janam bhail hai, wo hai hamara pyara desh Suriname, hamare janta. To bhai tulun jane stalkers Eifer pe, ego policy post hai. बाकी सुरीनाम में जानो जैसी पहाड़ी ये कुछ बसलाख करे भैया बड़ा मेहनत से पहिए हम लोग के अरफारिंग है ना मिले भैया सोना धना राख कुएक धना राख कानी कौनची कौनची धना आंत तक ओकर स्पोर ना मिले है तो ऐसने दोंदर राख से इवनिंग 20 अगस्त के हुआ के सिपाही स्टॉलकर एफर के एगो ओतो रुकाई से भैया तो ओतोवा में बड़ा ढेर एरो मिले है नानी बड़ा धीरे ओ टोनी श्री भी आ गया है टोनी जी आपको हम स्वागत करते अपना प्रोग्राम में हवड़ा हुई गया रहा से फिर भी बहुत प्यार भी यहां से हमारे पहुंचे तो बताए गए स्टॉलकर्स एफर के कॉमोवेन में है एगो पुलिसी पोस्ट है जहां पे ओ तो सब कंट्रोलर करे तो भैया एगो आदमी है ओकर पास बड़ा ढेर एरो पैसे बड़ा ढेर एरो पैसे एक आदमी का नाम बा फेबी The man werd na de aanhouding overgedragen aan de afdeling van fraude. Kijk, kan toe het eraan heel Europeile heeft. De blijk wel, ja, Iedemia tegen smokkel-mokkel karretraan van de economische delicten van de wet van strafbaar stelling van money laundering. Oesep kan moa karretraan, Iedemia. और एक पकड़ी से बकी अब तो डरे लगे भैया एक आदमी लियून जो पाए हुए या कुछ पाइस हुई तो पैसवा आधा कहाँ चल गए सिपाही के जेबी न चल गई भैया तू जाने विश्वास श्रीनाम में बहुत कम है बहुत यामर है भैया कि हम लोग अपन सिपाही लोग के इतना कमती विश्वास करेला माँ इस सब का करी से भाई पैसों जैसे बताए गए हैं ले जाए के सेंट्रल बैंक में सब पैसा धर दी से हुआ के क्राइस में De afdeling fraude heeft het in beslag genomen bedrag gestort in de kluis van Centrale Bank van Suriname. De Huadelle Veilige Bahia. Hoeveel euro's precies bij zich gaan worden in het bericht niet vermeld. Evenmin is vooralsnog bekend waar het geld vandaan komt om waarvoor het bestemd was. Juist die herkomst staat nu centraal in het verdere onderzoek Bahia. तो ये बातचीत है हमारे जनता तो बातचीत ये है हमारे जनता न्यूज तो हम आप लोग को सुनाते ही रहेंगे हमारा देश में क्या क्या हो रहा है और देश में क्या क्या हो रहा है तो अब देखा जाए भैया जैसे बताए गए हैं हम जैसे अभी बताए गए हैं कि सुरीनाम देश में पैसा के जो है पैसा के फरफाल्स हैत हुए हैं और फरफाल्स हैत हुए हैं तो अपने के पैसवा घुमाए उमाए के देख लियो हमारे जनता देख लियो कैसे बांधे फिर दिस गयाना वाला अभी बताए रही ऊ चले लगल है बौद्धो मोडम सब ठोंक ठाक के देख चुकल है बोले है कानावाई के जोन जोन फेर स्टॉप रहा बोले अब ऊ चले लगल है तो ये बातचीत है हमारे जनता अब देखो भैया एगो आदमी के सिपाही पकड़े मन आन खहोदन फॉर याखन इन बबाउद कॉम जहाँ ना चाही शिकार खेले कि भैया गैला जंगल में शिकार खेले कि कहाँ गैला मंगलवार के बात है फेफम फिर तक यारख शिकारी हाँ ना दर मेलिंग वास खमाक फंसकोतन अंद हेनार वेख के बात है बिनंद बबाउ द कॉम फॉर नोमन वॉट दर द मन बेसक वाद मैंने यख अपन कपुआ भैया कपुआ के दागत रहा और बिनंद बबाउ द कॉम जहाँ आदमी रहत रहा और बताएगा फॉर नोमन वॉट कि आदमी एगो कपुआ कपी बारा वार Bij hij twee schoten op het dier zou hebben gelost. Toen bolle naar de aanleiding van de melding hierover, sipahi jahua pahunchal hai.

Toen denk ik, ja, maar daar is het wapen wat voorzien van geldige of papieren. Voor daarom willen we op een oorlog gaan. En het zal oververder tot van de man worden beslist. Apu bandukia paai ki na paai. U habitua jor ha bole bane ka bole he. Binnen de bebouwde kom meer ha. Hamari janta. Jahan pe admir he he. Ta hua to kena maak dak ma bhaiya dekhis kapua. Dekhis goz bhaiya. Ta bole na jai lagle yaar. Masalawa me hamme chaunke ke hai to. Aise batia hai nani. जब मसाला अनमी जे सोचे तो सोचे आप का यार देखल जाए बबाउद है कि बबाउद ना है यहू से बबतिया है तो 18 बरिस के लड़का फ्री नंबर ऑफ सीरी आंखें बांची ठुए भैया बप्पाल गैल ओकर संगे बेटवा के लेके गैल है जाल गिरावे भैया गैल मछरी पकड़े सूरीनाम देश में बहुत गर्मी है दोस्तों बहुत गर्मी है शायद है सूरीनाम देश में और इतना ज़्यादा गर्मी है बोले फिर तक खराद हो जाए तो ये आदमी बप्पा और ओकर बेटवा गए ले और बोले है गो कनाल है गो गुतरो है का फ्रीडम ब्यूरोक्रेसी आमे तो जो हुआ गए है तब मछली पकड़ता बेटवा बोले है अपन बाप से बोले हमें बड़ी गर्म लेके बोले हमें इफ पौड़ ले बस लुंडवा पानी में कूदल भैया कभी ना निकल के आल पाल बहुत दुख के बात है तुन है हेट वाटर इन हिंग ओम आफ्त कूलन कोरदाना मेरट से फादर दत है नीत में शेख बारवास ondanks een zoekactie lukte het niet om hem te vinden. Oro sipahi uhi maile, duikersbrand weer geil hega. Te oker lichaam, sanja avontuur, sanja kinikari se. Tap to zeker mar jai bhaiya. To i bara dukke baant hai, te sunil dat gajiri bhi aankar hai. Hamara program me jud gaye hai. To Surinam ke janta kami hi batai hai. कि आप लोग वहाँ पर पौड़ी उड़ियो भैया बचाई के अब देखो हम जाएला फीस प्रेसिडेंट रेसलांत के ओर हम जाएला नानी तो रेसलांत काम बोले भैया एक बड़ी बड़ी नाम आदमी बोले बहुत सलाम फैफी पिया एन दुनिया भर की चीज के बोले हैं और ये एनपीएस के प्रेसिडेंट है गेगरी रेसलांत के बातचीत हुए जनता द तू नाम द प्रॉब्लम में द स्ट्रोंग फोर्सिंग इन द रिसेंट अनकोंडिंग फॉर द लात हैकिंग दो दे ने ची सुरीनाम बोले स्ट्रोंग बड़ा प्रॉब्लम है ओके ने यारन बोले 2014-16 में अनखद्रोन ऑफ आउटब्रेडिंग फॉर द प्रोडक्शन कैपेसिटी तो कभी एक अच्छा न्यूज लेके भी आओ भैया गगरी रेसलान आदमी के तू आओ डरवा आवे हम जानी हुआ जब देखते स्ट्रोंग हुआ गिर जाए भैया सब कोई के फोरात अपन चिरा किरा कार सुर धल्ले रहे ऐसा तो एक इलेक्ट्रिक से ओपलाद बार चिराग भी समन धल्ले रहे हैं कारण की जब स्ट्रोम गिर जा भैया तो उसे का बोले हैं अपन घर अब अंजोर कर सके हैं हम आप लोग को एक गीत सुनाना चाहते हैं और ये गीत कौन सा है दिल कहता है खुयानी से बॉलीवुड फैशन थेगा देवरा राखा

En dat was wel een hele goede wens. Dat heb ik wel genoten. Ik ga uit jullie ook. Toe je ego dil kahita hai. Goeie aan deze Bollywood fashion. Je, agar ja, hem sunna chaate, to sun sakte hai. तो दोस्तों एक औरत भैया आयला सीता गौरी चरण गजरी भैया गया है सुनील गजरी भैया गया हम सबको हम बहुत प्यार देते हैं स्वागत करते अपना प्रोग्राम में तो बातचीत ये हो रहा है जनता आप फकांसी से जाना घूमने को फकांसी प्रियुदय है तो इधर उधर जब जाना तो ना कुछ पकड़ के ये भी ये भी में धल्ले भैया एक औरत गए रहा फकांसी और फकांसी गैला फकांसी सु आवत रहा भैया और जब प्लेनवा पर रुकल बोले अब यशवा पहले तो यशवा जब पहली से भैया तो ओके कुछ काट ली से भाई ये आयल है ख्रिक्स ऐलान से आयल है ख्रिक्स ऐलान कोस से और जो लंदे भले फ्लिकते को तो बोले अपन पर यशवा पहरी और यास के जेबी में दुई गो स्कॉर्पियन रहा नानी अब देखो कौन चकल सुवे है बस स्कॉर्पियन ही औरतिया के काट ले भैया काट ले ब्रांतवेर फॉन दिसल द्रोफ वेर द फ्रो ईस्ट ओके मेजी से हेल्प मिले ले लुफ्त हाफन में औरतिया बोले हमार मुड़ी पिरा है और जहां काटी से सोचे बरैया रैया काटिस प्यार मार ब्लेफ अंश प्रेग मान दिसल द्रोफ के सिपाही इनफिस जैर ऐसी कौन है इसलिए गेगा और बोलेगा आयल स्पेशल टीम आयल है तो ई दोनों स्कॉर्पियोवा के पकड़ी से रेप्टिल एक्सपर्ट फॉन ब्रांतवेर वेर नारे लुखावन कस्टूड और मैं दीर फेलग तो फांगन एंड द सोर्ट फर्स्ट स्टेलर हर ब्लेक तो खान और मन खीले फाइव स्ट्रीप स्कॉर्पियोन ओक बकेट आज द खीले मिडलांसे सी स्कॉर्पियोन Deze soort behoort tot de giftigste scorpioenen ter wereld. De bichi bole na, met je na een scorpioen, ke bole bichi kaart lezen over het jake. Of sub se gevaar waren raha. Het gif bevat krachtig. Of bole he ook zenuwen letsel borega sub antastikker deze. Volwassen doorgaans is niet dodelijk, maar kan wel hevige pijn en andere klachten veroorzaken. Bole ii scorpioenen mille he Noord-Afrika me. Turkije met Arabische schiereilanden mee. Hoe het die precies in de jas van de vrouw terechtkwam, is niet vastgesteld. De vrouw was kort voor de incident vanuit Kos naar Duitsland gevlogen. De gevangenscorpioen is na de incident overgebracht naar de reptielen. Dus na Eurotia pakken ik het herra, maar bij Patana Kaisito Yasuma met Chelge Bahia. Jeba, cheat heb ik op Bahia, Hamjaila, Turkije mee. Turkije के तुलन जानो है तो Turkije के भैया हुआ के बोले है Turkije वेल अरेस्टासी नेतान्याहू और मिसतंदन तेगन द मेंसलक है Turkije बोले नेतान्याहू के चाही पकड़ के बंद करे के तुर्क के मिनिस्टर बोले है यूसीसी से मार भैया नेतान्याहू के मुड़ी पे दोनों हाथ है त्रंब के ओके कैसे छियो Deze vloot van 50 boten wilde afgelopen mei voedsel en hulpgoederen naar de Gaza-stroep brengen, maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvaarden te arresteren. Onder hen waren ook 3 Nederlanders mensen. Dus, jatra khaik pani bhaiya, boortse, huan pe ka bole Gaza me. De Israël ओके दाग के सब अरमियन के और का बोले अरेस्टेर कल्ले से हमारे मौसी हमारे नानी लोन तो हमारे ख्याल से या ही घंटा हो गया है हमारे समाचार को हनरित रामधीन का बोले फिर यहाँ पे के पार्लियामेंट बोले है जो मिनिस्टर फ्रॉम बैतलन साके है गारे मेलफिन बाउफाक बोले हैं बोले वो अपन को फरवाना खोले जो बैतलन से आवे मतलब उनका टेमना है वन अबे को फरवाना खोले वही को फरवा ली के बोले वो खाली दुनिया के शायर करे भैया और रिसल्टात को सुनाई बन करे होकर ओम दैट ओकर नाम है गा मिनिस्टर फ्रॉम बैतलन से साके फ्रॉम इंटरनेशनल हैंडल एंड सामनवर्कन और बोले तेदंस द फोरकर के प्रयोग जब हम लोग के मिनिस्टर जात्रा नाम नहीं तो बोले बड़ी क्रिटिक ले फर करत रहा बोले रेस खतरा फने मिनिस्टर अब बोले न्यू ब्लैक फॉक्स द फिया पे
meer dat Bova juist degene is die steeds uitlandig is. Obole Melvin Bova was de man die altijd uit de stoel ging springen. Hardem kunnen dragen. Bole minister wa. VHP ke bole khali buitenlandja he. Bole uitlandig gaan. Stond hij al eerste op. En ja, de minister is weer uitlandig. En bla bla bla. Obole ichi juato api apare kare he bhaiya. Bova. Tab dekho Brazilië ja he. Te hiya ja he. Te hua ja he. बोले कई कई देश जा अब देखो दो दो दादा के तुरुन जानो भैया दादा बोले आला कूली मूस गो ना इंडिया और दो दो बोले है इस सब एंडी पेयर भैया बोले है दो दो हाल कई हर ऐत ना रखेरिंग सिमोन में देसे मेंसन खा ये हेड ना नीट क्यूनन ऑन टू वे कलन बाकी तो ही रहले भैया जून इस सब करी से भैया और एगो बड़का माफिया ग्रुप पकड़ाने भैया तुरुन जानो एक मिला लाश हो गया रहा सूरीनाम देश में वो फिल्म माकर ओकर बारे में तो दोस्तों आप लोग को यही कहते हैं कि हमारा समाचार यहाँ तक था सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम जा रहे हैं और आगे को तो हम रिक्लाम की ओर जा रहे हैं जितने लोग हमारा फेसबुक है हम सबको बाय बाय स्वाई स्वाई करते हैं राम राम नमस्कार भैया सीता गौरी चरण सुनील गजरी शांति सरदार टोनी कुमार जामी अर्चना धर्मेंद्र देविका हनुमान और भैया उस्ताद उस्ताद जो है सुंदर हीरा एंड इधर इन सुनील गजरी इधर इन बाय बाय स्वाई स्वाई

और नाचो बेटी नाचो, ये सॉन्ग है मारी जोसी जमीर, और ये गीत है नाचो बेटी नाचो, और ये है भोजपुरी सॉन्ग। और इसके बाद हम एक और भोजपुरी सॉन्ग के ओर जा रहे हैं, मॉरिशस का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों। तो हमने सोचा कुछ सुनाए, अभी वो जा रहे भैया, माया कर ले मेरी जान, सेगा भोजपुरी सॉन्ग है, और ये भी है का बोले है भैया मॉरिशस का, हो बूढ़ा मत करो बूढ़ा है शैतान, यहां पर लिखा भैया, तो हम बोली बता दी, चलो सुना जाए।

0: और दोस्तों मजा कर ले मेरी जान, कुछ भोजपुरी सॉन्ग आज हम लोग आपको मॉरीशस के सुनाते हैं। मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होगा जवान, हो बूढ़ा मत करो, बूढ़ा है और वो है शैतान। यहाँ पर गीत के बाद भैया हम ना बोलेला, उसके बाद हम जाते हैं सोना नोयोन के कौन फुलवा कौन फुलवा, ये भी एक गीत है भोजपुरी का, आओ मिलकर सुना जाए।
1: अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो, अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो, अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो, अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आटा गीला होगा।

और कौनो फुलवा के ये गीत है दोस्तों, कुछ आज कुछ और आपको हम सुनाते हैं। सोना नयो गमत और कौन फुलवा का ये जोंग है जो मॉरीशस के लोग इस गीत को गाया है और बहुत खूबसूरत से गाया है। तो आज कुछ एक्सक्लूसिव सॉन्ग आज हम आप लोग को एक घंटा सुनाएंगे और उसके बाद दोस्तों कुछ और सॉन्ग आप लोग को हम सुनाएं। तो हम चलते हैं लंगारों के ओर। लंगारो बॉयज से एगो भोजपुरी का और वो है भी मॉरीशस का। आओ सुना जाए ये क्या गाया है।

और हे लंगड़ों के बाद चीज को छोता है। हमारे दोस्तों आज कुछ भोजपुरी सॉन्ग मॉरिशियस को आपको हम सुनाते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाते हैं। और तो आज हम आप लोग को भोजपुरी जोन से मलामाल करेंगे कि कमरवा के कुछ गीत है दोस्तों, और ये कमरवा में क्या क्या होता भैया आप खुद ही सुनिए। काम करवा

जी काम करवा, ये भोजपुरी सॉन्ग था मॉरिशियस का दोस्तों। अब हम चलते हैं एक भोजपुरी सॉन्ग, वो है हमारा भारत का, इंडिया का भोजपुरी सॉन्ग। अब मिलकर उस सुना जाए।

0: प्यार करे खाती चांग के मोटा भइल और सीना के चौड़ा भइल जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होके के चाहिए।
1: अपने आप के बहुत बड़ा आशिक समझले, चल तो साबित कर।
2: और ऐसा बड़ा नाचे ना माचिस, ये भी भोजपुरी है, ये है इंडिया का भोजपुरी दोस्तों। और आज हम आप लोग को श्री भोजपुरी ही एक घंटा को सुनाएंगे, और उसके बीच में हम जा रहे फिर एक भोजपुरी जो मॉरिशियस का है दोस्तों। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं।

हेलो कमरिया फुला के, और क्या क्या ये गीत को ये आदमी कितने खूबसूरत के गाकर सुनाए हैं। आओ ये गीत को और सुना जाए।

मुरिका मुरिका के कुछ सॉन्ग है दोस्तों, यहां से आपको हम इंडिया का कुछ भोजपुरी सुनाएंगे। पवन सिंह काजल रघवानी का, प्रियंका ने इसमें काम किया है, जोंग फान ने छलकता हमरो जवनिया।

चल चिखले जवानी। तो जवानी के बाद हम फिर एक सॉन्ग लेकर अभी आएंगी दोस्तों, और वो सॉन्ग क्या है, जोश में आके होश मत गवाइयो।

आके और जोश में आके और आगे चला हो भोजपुरी सॉन्ग। और ये है हमारा मॉरिशियस का ये गीत है जो राजकमल चिंता मुनि ने गाया है हमारे दोस्तों। यहां से और आगे हम चलते हैं राजकमल की ओर, फूली गिरी।

और प्रेम की नैया है और राम के भरोसे। दोस्तों कुछ रीमेक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे और प्रेम की नैया के बाद हम क्या लेकर आएंगे, बस सुनते रहो। फुल हॉट वन।

और मुन्ना मुन्ना मुन्ना मुन्ना गोरा रंग देखी और दीवाना हो गया हमारी दोस्तों। और हम चलते हैं रिमेक सॉन्ग, और रिमेक सॉन्ग की ओर हम चलते हैं फुल डांस एंड हॉट वन।

फुल रीमिक सॉन्ग आज हम लोग को आपको हम सुनाएंगे, एक और हो जाए।

0: Mixed by DJ Tonmoy.
1: दोस्तों आज हम रिवेक्स के मोड में हैं और जरेगेस के मोड में हैं, तो आपको हम सिर्फ रिमेक्स ही रिमेक्स आपको सुनाएंगे हमारे यारो। उसके बाद में हम चलते हैं एक और जोंग की ओर, आओ सुना जाए ये क्या है।

और तू अनारी और कौन है खिलाड़ी, ये कौन सा सॉन्ग है, रीमिक्स सॉन्ग है जो रेडियो फोन के माध्यम से आप लोग को हम आज चुमाते हैं, नचाते हैं, आओ सुना जाए।

En beste luisteraar, Aantje Remix के मोड में है और जो रिमिक्स के मोड में है तो आपको आज छुमाएंगे, नचाएंगे, सजाएंगे, जानी है हमारा नाम।

और छोड़ दिए हमने सारी दुनिया तेरे लिए है, और उसके बाद हम चलते हैं और आगे को अपना फुल रिमिक्स सॉन्ग लेकर हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं आज रिमिक्स के मूड में हम हैं, और रिमिक्स के मूड में हैं तो हम क्या लेकर आते हैं, आओ सुना जाए।

और विजाओं ही विजाओं, और देखा जाए तो आज हम आप लोग को कुछ रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे और कुछ शायरी आज नहीं होगा लेकिन सिर्फ सिर्फ रिमिक्स हॉटवॉन। नाचने के मूड में हो तो आप नाच सकते हैं, झूम सकते हैं हमारे यारों।

और जीना दुश्वार हो गया है। तो आज रिमिक्स के मूड में है मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हैं आज हम रिमिक्स के मूड में हैं। तो हम फिर एक रिमिक्स सॉन्ग के और हम जाते, तो हम चलते हैं एक सॉन्ग के ओर।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दोस्तों तुरंत चलते हैं नेपाली जोंग की ओर और कुछ चश्मा का गीत आज हम आप लोग को सुनाएंगे। चलो सुना जाए।

काला काला चश्मा लगैली। ये कुछ नेपाली सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे हमारे यारो, और उसके बाद हम आप लोग को और कुछ सुनाएंगे।

और ये काला काला मेरे ख्याल से आंखें पे और चश्मा लगैली, ये नेपाली जोंग है दोस्तों। कुछ समझ में आते हैं और कुछ नहीं आते हैं, लेकिन जो उसका जोंग है, ढंग है, हमारा बॉलीवुड सॉन्ग के स्टाइल है। तो आज आप लोग को हम सुनाएंगे, हम और चलते हैं, एक रीमिक्स हो जाए नेपाली का जोंग।

काला काला चश्मा लगैली, ये कुछ नए पाली सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे हमारे यारो। और उसके बाद हम आप लोग को और कुछ सुनाएंगे।

और ये काला काला मेरे ख्याल से आंखे पे और चश्मा लगैली, ये नेपाली जोंग है दोस्तों। कुछ समझ में आते हैं और कुछ नहीं आते हैं, लेकिन जो उसका जोंग है, ढंग है, हमारा बॉलीवुड सॉन्ग के स्टाइल है, तो आज आप लोग को हम सुनाएंगे। हम और चलते हैं, एक रीमिक्स हो जाए नेपाली का जोंग।

औरों से कुछ रिमिक्स सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते ही रहेंगे और उसके बाद हम चलते हैं एक गीत की ओर और वो है सुशांत काशी सारंगी के वांछित हो रहा है और क्या है आओ सुना जाए ये कौन सा सॉन्ग है लेकिन पूरा नेपाली सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे।

और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, उसके बाद हम अगला गीत की ओर जाते हैं। लेकिन आज हम आप लोग को नेपाली सॉन्ग हिट ऑफ मशहूर फन तक नेपाली सॉन्ग्स और मूवी सॉन्ग्स भी आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये सब गीतों गीत जो है और बहुत अच्छे से गाया हुआ है, आओ हम सब मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों आपको हमारा यही आशा है कि आपको ये नेपाली सॉन्ग भी आपको अच्छा लगेगी। आप जानते हैं बेरान यो फाहन हैप टू आलस इन हेस, कभी तो नेपाली होता है तो कभी भोजपुरी सॉन्ग होता है, तो कभी भोजपुरी सॉन्ग मॉरिशस के होता है, तो कभी बैठक गाना होता है, तो कभी बॉलीवुड और इस गोल्ड सॉन्ग, और कभी रीमेक्स तो कभी नया सॉन्ग। दिस वी हैव आलस इन हेस मेंसी एंड दैट इज द क्वालिटी फन ऑन सी रेडियो फोन। आओ एक और चला जाए नगर नंजी नालाल, नगर नंजी नालाल।

और नागर नंजी नालाल अदिच्या गदवी का ये जोंग है। हमारे दोस्तों नोगमाउस वै जैन फन अलस इन हैस एंड दैट इज अलीन बे रेडियो फाहुन के पास हर एक रकम के गीत आप लोग सुन सकते हैं जैसे ये भी।

माया तमाया हो दोस्तों, और माया तमाया के बाद तो हम चलते हैं कुछ डांस गीत की ओर, जो न्यू नेपाली लोग दोहरी सॉन्ग, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है ट्वेई दैसन फैफन से इवन तक, इसका मतलब तो हमारा समझ में नहीं आते है, लेकिन यहाँ लिखल है न्यू नेपाली लोग दोहरी सॉन्ग ट्वेई दैसन फैफन से इवन तक, सलको पटको सर को पटको दोस्तों, आओ सुना जाए इसका मतलब क्या है।

और दोस्तों कुछ नेपाली सॉन्ग यहाँ से हम चलाते हैं और सुना जाए लाई भरी लाई।

और लाल परी हो लाल परी। उसके बाद हम और कहां जाते हैं, एक सॉन्ग और हो जाए।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

कुछ रिमिक्स सॉन्ग हम आप लोग को आज सुनाएंगे हमारे यारो। सात समुंदर की बातचीत है ना, वाह वाह, हमें भी पीछे आना है।

Hello, only by radio. फोन ओनली बे रेडियो फोन जॉनीस ने और आज रिमिक्स हॉट सॉन्ग आपके हम सुनाए। हम चलते हैं बादशाह बादशाह।

ही नहीं हो रहा। चाहे नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो पैडी बोलती है। गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

लगे मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस्का लगा। रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा।

और लड़की खराब करी दी पायल ले आज दोस्तों कुछ रिमिक्स हॉट सॉन्ग आपको सुनाएंगे हर बार।

आओ जिसको बोलो ना हमारे यारो, आज जॉनी कुछ रिमेक हॉट सॉन्ग के ओर में है, उसके बाद तो भी समुंदर के बाद में, और क्या हम आपको सुनाएंगे, बस सुनते रहो।

0: रांध को आऊंगा मैं, और रांध के आऊंगी तो क्या करेंगे?
1: मुझसे शादी
0: करोगे ना?

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753562 तक सेवन फेटा फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

और ये सब गीत से, और ये सब गीत से आदमी लोग के गर्मी लग जाता है। प्यार के गीत है और प्यार के मूड में आज हैं, तो हम और अगला गीत की ओर जाते हैं। और वो है, जब किसी को आप प्यार करते हैं तो आपको क्या दिखना, क्या दिखते हैं आपकी आंखों के आगे, आपके नज़र के आगे क्या आ जाते हैं। जो अगर सचमुच किसी को प्यार जो आप करते हो तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

मोरे दोस्तों, आज आप लोग को हम ओनली लवली सॉन्ग्स सुनाएंगे। हम चलते हैं जग घुमाए गब घुमाए के ओर, हम चलते हैं एक प्यार भरी लवली सॉन्ग, राहत फतेह अली खान।

0: और जग घूमता जैसा तुम्हारा और क्या क्या है दोस्तों, तो हम आची फिर से और प्यार के मूड में हैं। चलते हैं तेरी मेरी क्या है, चला जाए।
1: शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
2: ऐसे कैसे पूछूं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है।

0: हरी भरी और मुस्कुराने की बात करते हो तो कैसे होगा हमारे यारो। और दोस्तों तो एक गीत हम और आप लोग को, ये है प्यार भरी नगमों की बहार, प्रोग्राम ख्वाबों का तू है और क्या।
1: राहों में लम्हे रुक जाए, ऐसे ही टूट के दिल तुझको चाहे, फिर से उन यादों के पुर्जे उड़ा रहा हूँ, फिर से तेरा रह गुजर।

ख्वाबों का तू है रे गुजर रे तू दोस्तों हम प्यार की मूड में आँच हैं ते तो यारो हम चलते हैं एक गीत की ओर।

मेरा एक सपना है, क्या आपके भी सपना होगा? तो जो सपना है तो कभी कभी पूरा हो जाता है और कभी कभी और बहुत अफसोस है कि नहीं पूरा होता है। मरे एक छोटू के लिए है।

और आम लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और दोस्तों प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है?

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा आम।
1: अरे जाम, तो ये बात है दोस्तों, तो ये बात है दोस्तों। दोस्तों मुकेश भाई थी मुकेश, करोड़ों को करोड़ों का दिल चुराने वाला, हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में, हसरत जयपुरी शैलेंद्र।

लगी जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर। ओ हे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

दीवाना हुआ पागल नोक स्टेज द लवली सॉन्ग मेंशन। तो हम जानते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ जाते हैं, किसी के चुनरिया उड़ जाते हैं, तो चुनरिया पे भी गीत बन चुका है यारो।

और सर से वो सर की, तो कभी धीरे धीरे के सांझ में हम चलते गोविंदा और नीलम की ओर, और वो है खुदगर्ज, मूवी के नाम है खुदगर्ज से पर हिट सॉन्ग मैं से मीना से नशा की डरी कैनेडी से बैल है।

और आप किया जाने से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूं तेरा नाम।

0: कहा अब तुम हो जवान मेरी जान धड़क पन छो।
1: और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, इट्स हील मूवी फिल्म है जी। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइती मुकेश का ये सॉन्ग।

और तुमसे हो हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करनी थी। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्श 1967 के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की और आशा जी मूवी का नाम है पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

0: परवर का ये सॉन्ग है और आप जानते हैं रफी साहब कितना सुंदर सुंदर गीत को गाया है, तो ये आप सबके लिए भी है।
1: There is no need for panic. We are crossing some highways. Please remain where you are. And for your entertainment, Miss Colette will give you an exciting cabaret number.

और अब नाराज खुदा कहने करे दोस्तों क्या जरा ठहर तुझे समझाऊं। पूजा का फूल है मूफी का नाम है, नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है।